0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी थोड़ी ही देर में आप सुबह 6:02 पर कार्यक्रम सुनेंगे सुप्रभात, जिसमें वीर तमन सिंह आपके साथ होंगे। सुबह 7:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें आप दिल्ली जगत की सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ गीतों का आनंद लेंगे। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे गौतम गौर। सुबह 8:02 पर वीर दमन सिंह आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:02 पर आप सुनेंगे दिल के तराने गाने नए पुराने, गौतम गौर इसमें आपके साथ होंगे। इस कार्यक्रम में आप नॉनस्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर सुन सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने गीतों का भी आप आनंद लेंगे। सुबह 10:02 पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आवर, इसमें आप अंग्रेजी गानों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 11:02 पर आपके लिए कंचन कनन लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, इसमें बॉलीवुड जगत की सभी अपडेट्स आप ले सकते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन गीत भी आपके लिए सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:02 पर अंग्रेजी कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल, उत्कर्ष इसमें आपके साथ रहेंगे। दोपहर 1:00

पर 2 मिनट पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन। कंचन कनन इसमें आपके साथ होंगी। ये फोन इन कार्यक्रम है और इसमें आज का विषय रहेगा मॉनसून हेल्थ और स्पेशल, और साथ ही इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर विपिन कथोरिया। दोपहर 2:02 पर स्वाति गुप्ता आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे लाइव रेडियो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर्स, जिसमें श्वेता शर्मा आपके साथ होंगी। आज इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, एम्स न्यू दिल्ली। शाम 4:02 पर युवाओं का कार्यक्रम अल्फा जैन आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्वाति गुप्ता और माला नेगी आपके साथ रहेंगी। सुबह शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जिसमें श्वेता शर्मा आपके साथ रहेंगी। इस कार्यक्रम में आप दिल्ली जगत की सभी जानकारियां सुन सकते हैं, साथ ही गीत आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। प्रवीण शर्मा इसमें आपके साथ रहेंगे। शाम 7:02 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक, और इस कार्यक्रम में ये अंग्रेजी कार्यक्रम है जिसमें ज्योति अहलावत आपके साथ रहेंगी। रात्रि 8:02 पर प्रवीण शर्मा आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें नॉन स्टॉप डांस हिट्स का मजा आप ले सकते हैं। रात्रि 9:02 पर विनीता बेदी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम आपकी याद आती रही, 90s के गीत इसमें आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। और रात्रि 10:02 पर अंग्रेजी कार्यक्रम ज्योति अहलावत आपके लिए लेकर आएंगी, जिसका नाम है वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो क्लासिक्स। और गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 11:02 पर विनीता बेदी के साथ कार्यक्रम रंगे महफिल में। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 5:59 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार।

नमस्कार, पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कोयला और खन मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन तथा अन्य दो रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिरगिंग में कल खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। तो ये तो थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6।

सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम सुप्रभात लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर तमन। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात। जिंदगी की खूबसूरती इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे देखते हैं। आज मैं आपसे एक प्रेरणादायक कहानी पत्थर की लकीर साझा कर रहा हूं, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल शारीरिक क्षमता पर नहीं बल्कि अटूट इरादों और सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत पर निर्भर करती है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत पर दो पक्षियों के घोंसले थे, एक घोंसला चील का था और दूसरा एक छोटी सी गोरैया का। चील बहुत ही ताकतवर थी, वह आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ सकती थी और किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी। दूसरी तरफ गोरैया आकार में बहुत छोटी थी, उसकी उड़ान भी सीमित थी। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। उस खतरनाक मौसम में चील ने फैसला किया कि वह बादलों के ऊपर जाएगी और तूफान को पीछे छोड़ देगी। वह अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ी और तूफान से पार चली गई। गोरैया बेचारी बहुत छोटी थी, उसे अपनी जान का डर सता रहा था। वह पेड़ के एक कोने में छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूफान उसे बार बार उड़ने पर मजबूर कर रहा था। तभी गोरैया की नजर चील पर पड़ी। उसने देखा कि चील बादलों के ऊपर शांति से उड़ रही है। गोरैया के मन में एक विचार आया, अगर चील इस तूफान का सामना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। गोरैया ने अपनी छोटी छोटे पंखों को फड़फड़ाया और पूरी हिम्मत जुटाकर तूफान की दिशा में उड़ान भर दी। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आई, हवा के दबाव से वह बार बार नीचे गिरने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंखों को तेजी से घुमाया और चील की तरफ तूफान के बीच से रास्ता बनाती हुई बादलों के उस पार पहुंच गई। बादलों के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था, वह ना वहां ना हवा थी ना तूफान, केवल सूरज की किरणें थी। गोरैया ने अपनी आंखों से असंभव को संभव होते देख लिया था। वह समझ गई कि उसके पास भी आसमान में ऊंचा उड़ने की क्षमता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक क्षमता नहीं इरादे मायने रखते हैं। गोरैया छोटी थी, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे तूफान पार करने की ताकत दी। मुश्किलों में मौके तलाशें। अक्सर मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमता को पहचानने का मौका देती है। अपनी कमियों को अपनी हार का कारण न बनने दें, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत का मौका समझें।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सुपर बात। कहते हैं जितना अधिक आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे उतना ही अधिक आप अपने जीवन में महान चीजों को आकर्षित करेंगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात। कहते हैं जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी तो तेरे पास है, जो मिल गया वही अपना है, जो नहीं मिला वो सपना है। वह सपना है और सपने में मत गिनो कि जिंदगी के पल को इस तरह जियो कि जिंदगी हर पल जी भर कर मुस्कुरा कर हंस कर जियो। और ये जिंदगी का आज नया पन्ना है। जी हाँ, आज दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं 15 जुलाई 2026। तो इस पन्ने में वो लिखो जो आने वाले सब पलों में सबसे खूबसूरत पल हो। ये अपना ये पल हंसकर खुश होकर मुस्कुरा कर जियो।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं सुपर भात आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। कहते हैं जीवन के पहलू में खो मत जाना, आसान नहीं है इरादों में खरे उतरना, एक बार थाम लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है ये जिंदगी नाम के खेल को जीतना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। कहते हैं जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है दोस्तों, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। तो जरूरत है धैर्य रखने की, प्रयास करने की, क्योंकि समय बदलता जरूर है, यही जिंदगी की सच्चाई है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। मैं एक और आपके साथ प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहा हूं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पेट पालता था। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन अक्सर लोग उसकी बनाई कला की कीमत कम लगाते थे, जिससे वह निराश हो जाता है। गांव के छोर पर एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। रोहन अपनी परेशानी लेकर महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूं, अपने काम में पूरा दिल और जान लगा देता हूं, फिर भी लोग मेरे काम की तारीफ नहीं करते, मुझे मेरी मेहनत का सही फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए रोहन की बात सुनी और उसे एक छोटा सा पत्थर देते हुए कहा कि बेटा कल सुबह इस पत्थर को लेकर बाजार जाना, बहुत से लोग इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन तुम्हें किसी को भी इसे बेचना नहीं है, बस तुम्हें लोगों का रिएक्शन देखना है और चुपचाप मेरे पास लौट आना। रोहन अगले दिन सुबह सुबह उस पत्थर को बाजार लेकर गया। सबसे पहले एक फल बेचने वाले ने इस पत्थर को देखा और बोला, यह बहुत अनोखा और सुंदर पत्थर है, मैं अपनी दुकान के कोने में इसे सजावट के लिए रख सकता हूँ, तुम इसके बदले में 10 रुपये के फल ले लो। रोहन ने पत्थर नहीं बेचा और आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उस जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उसने कहा कि यह साधारण पत्थर नहीं है, यह बहुत कीमती रत्न है, मैं इसके तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ। रोहन ने उसे भी बेचने से मना कर दिया और गुरुजी के पास लौट आया। रोहन ने महात्मा को सारी बातें बताई और तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि रोहन ठीक इसी तरह तुम्हारा हुनर और तुम्हारी मेहनत भी, जो लोग तुम्हारी क्षमता को नहीं पहचानते वे तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम में काबिलियत नहीं है। तुम्हारा काम तब सफल होगा जब तुम सही जगह और सही लोगों के बीच अपनी पहचान बनाओगे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के कहे अनुसार कभी भी अपनी कीमत या क्षमता तय ना करें। अगर आज लोग आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी कला को निखारते रहें, सही समय और सही लोगों के बीच आपकी मेहनत और आपका हुनर एक दिन जरूर रंग लाएगा और आपको पहचान दिलाएगा। लाइफ में वही चमकते हैं जो अंधेरे में काम करते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग जरूर है दोस्तों, पर रिजल्ट माइंड ब्लोइंग होता है। हर दिन 1% बेटर बनो। तो अगर एग्री करते हो तो आज से ही एक्सक्यूज नहीं एग्जीक्यूशन चुनो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और आपको बता दें कि अगला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ रहेंगे गौतम गौर। और कहते हैं कि लोगों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो छोटा सा अंतर बड़े अंतर डालता है। और वो थोड़ा अंतर दृष्टिकोण का होता है, बड़ा अंतर है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उसे आप किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमारा भी इस प्रोग्राम से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। चलते चलते इतना ही कहता हूं मैं आपसे कि सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए, आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर। और रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। तो इन ख्वाहिशों को थमने मत दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी के साथ हाथ मिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ अब वीर दमन इस

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इससे अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बर्मिंगम में कल खेले गए पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो दिखलाना जरूरी है, और जिंदा हो तो प्याला पूरा भर लो। वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम आ चुका है, आपकी खिदमत में हाजिर है। एंड शाम आया तो कहना छेनू आया था, लेकिन शाम नहीं, सुबह सुबह कहीं ना कहीं आपको जागना पड़ता है। और जैसा कि मैं कहता हूं ना कि नए वाले या पुराने वाले जो आपके शूज हैं, स्पोर्ट्स वाले जो आप लाए थे, खासकर आज के दिन के लिए ना, आज कभी नहीं आता है, कल पर हम सारी चीजें जो है सौंप देते हैं कि कल से करेंगे, कल से जाएंगे, कल से जिम जाएंगे, लेकिन फिटनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, एनर्जी के साथ 102.6 FM।

मुश्किलें लाख आ जाए लेकिन डरना नहीं। और बस ये है कि डरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें ना आपके जीवन में ऐसी आ जाती हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। ऐसे में कोशिश आपको ये करना है कि टर्न एंड ट्विस्ट तो आते रहेंगे लाइफ में, लेकिन आगे बढ़ते रहना है आपको, जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 7:11 हो गए और स्टूडियो में आ चुका हूं मैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। क्या है आज के दिन में खास, ये भी बताएंगे आपको।

वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। लेकिन तजुर्बे से बेटर ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त जो है ना वो किसी के लिए रुकता नहीं है, थमता नहीं है। और वक्त हमारा, ये तो हमारा नारा है ही दिल से दिल तक, लेकिन टाइम स्पेयर्स नो वन, यानी कि वक्त के साथ आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है। आज है 15th of July, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि सही कौशल यानी कि स्किल्स भी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। और इस वर्ष की थीम है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। फ्यूचर आपका ब्राइट है वो हमें पता है, लेकिन इसका संदेश ये है कि बदलती दुनिया में तकनीकी, डिजिटल, AI, ग्रीन और सामाजिक कौशलों का संतुलित विकास ही युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा। आज का युवा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं है, ये वो युवा है जो सुबह उठेगा, 1.5 GB डेटा खत्म नहीं करेगा, ये फिटनेस पर भी ध्यान देगा। और चाहे कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या कोई भी हुनर हो, टैलेंट के मामले में तो हम किसी से कम नहीं है, है ना। 102.6 FM, गुड मॉर्निंग डिलियंस। यार जरूरी है सीख लीजिए कुछ, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, पर मैंने सुना है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती।

Well, अक्सर आपने ये लाइन सुनी होगी, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। और अक्सर शुरुआती दौर में वो जो चैटिंग होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है, जहां पर रिवर्ड बैक काफी कमाल का आता है इंस्टेंट तरीके से। लेकिन अपग्रेड करना अपने आप को बहुत जरूरी है, अपडेट करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से आपके फोन हो या लैपटॉप हो। लेकिन कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जिन्हें अपडेट ना ही किया जाए तो काफी बेटर लगते हैं, जैसे कि शाम आया तो कहना छीनू आया था, शुरुआती दौर में मैंने कहा था, और खामोश बस एक शब्द और पूरी फिल्म इंडस्ट्री समझ जाती थी कि बात किसकी हो रही है।

जी हाँ, अपनी दमदार आवाज, बेहतरीन संवाद, अदाकारी और शानदार अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का आज जन्मदिन है। और मैं आपको बता दूं, उनका जन्म 15 जुलाई 1946 को पटना बिहार में हुआ था। कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, शान और नसीब जैसी अनेक सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार किरदारों से उन्होंने अलग पहचान बनाई और अभिनय के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी योगदान दिया और यही कहेंगे कमाल का कंट्रीब्यूशन। तो आइए इस खास मौके पर हम सब मिलकर बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे। एंड बस, गाना तो मुझे आता नहीं है लेकिन बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए कि आप जिए हजारों साल साल। हैप्पी बर्थडे। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

डाटा का क्या है, कभी भी बरस जाए, लेकिन हम तो वो हैं जो आपके प्यार के बिना एकदम तरस जाए। वेल, ये कहा जाता है प्यार आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम याद कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, जन नेता और शिक्षा के प्रबल समर्थक कुमार स्वामी कामराज जी को, जिन्हें प्यार से किंग मेकर कहा जाता है। उनका जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था, और के कामराज ने सादगी, ईमानदारी और जनसेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। एंड उन्होंने गांव-गांव तक स्कूल पहुंचाए और गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूलों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनकी जयंती पर हम शिक्षा, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। बहुत जरूरी है सही मार्ग पे चलना और एक अच्छा मार्गदर्शन होना। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई गुरु रहा होगा जिसने आपको कहा होगा, ओ गुरु हो जाओ शुरू। शुरुआत कहीं से होती है और वो शुरुआत करनी जरूरी है। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। हम तो यही कहेंगे, आज से ही शुरुआत कीजिए। क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनता, एक दिन जरूर बनता है। मैजिक

के रूठे रूठे से मेरे यार नजर आते हैं, के रूठे रूठे से मेरे यार नजर आते हैं, अब तो हमें अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। वेल, सुल्तान को जब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक सुल्तान खुद से ना हार जाए। तो सबसे पहली लड़ाई आपकी खुद से ही होती है, 90% आपके माइंड में होती है और 10% आप इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में। और फिर बस यही है कि मतलब होते रहेंगे आपके काम, आप आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में, मुश्किलें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन वो जज्बा कभी भी कम नहीं होगा। हर रोज ऐसा लगेगा जैसे नई लड़ाई है और अभी तो शुरुआत है पहले प्यार की तरह, लेकिन ये प्यार हर रोज होता है आपके साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं 102.6 FM।

और पहले प्यार का इजहार इजहार यही है कि क्रिकेट और फुटबॉल, वैसे तो प्यार आला दर्जे का, इसमें भी का कोई फर्क नहीं है। अक्सर लाइफ में ना भी का जो फर्क होता है काफी बड़ा हो जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। पहले ये सच है कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं नो पेन नो गेन, और ये दिखा दिया है फैंस ने भी फॉर स्पेन, यानी कि स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर धमाल मचा दिया। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। डलास स्टेडियम में मिकेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल दागा। स्पेन 2010 याद दिला दें आपको, इतिहास की तरफ लेकर चलते हैं, 2010 के बाद फाइनल खेलेगा। तब टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराकर अपना इकलौता वर्ल्ड कप जीता था। वहीं फ्रांस 2018-2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से रह गया है। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, उन्हें खेल से प्यार है और लाइफ में स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है।

कमाल की बात तो हो गई, लेकिन धमाल की बात भी कर लेते हैं। अभी भी आप लेते रहे अपने बिस्तर पर अंगड़ाई, पर स्टूडेंट्स हैं ऑन मिशन फॉर पढ़ाई। दूध के ऊपर आए ना मलाई, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जमकर कर रही है लड़ाई। जी हां, कमाल की राइमिंग और टाइमिंग है। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एंड मैं आपको बताता चलूं कि दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, उन्होंने पहले गेंदबाजी में 4 विकेट झटके। एंड टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस, सिंपल है। और ऐसे कैच का कोई मैच नहीं होना चाहिए। वेल, इसके साथ जरूरी है कि ये समय आप कहीं ना कहीं कैच करके चलें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी

अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो भाई सारे। दिखा दें आपको दिन में तारे। वैसे आपको लग रहा होगा ना मुझे पंजाबी क्यों आ रही है। वेल, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो, ढोल बाजे, बिकॉज सवेरे सवेरे खा के पूरी के संग भाजी आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। वीर धवन पाजी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। और ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, बस रब पे भरोसा रखो और थोड़ा सा एतबार भी करो। वेल, अभी मुझे जाना पड़ेगा, एंड तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, लेकिन जाऊंगा तभी तो वीर धवन आएंगे स्टूडियो में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर धवन, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी।
1: धन्यवाद गौतम, वैसे आप छा गए हो। जो ये आपने ये तुकबंदी की है ना शब्दों के माध्यम से, अरे वाह, मजा आ गया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सुबह तो हो चुकी है ना, सुबह हो गई मामू, और सुबह का ये मौसम है और अच्छा है, और दिन भर आई होप कि ऐसा ही मौसम थोड़ा बना रहे, क्योंकि दिन में उमस और गर्मी है। और कहते हैं कि बारिश कब आएगी,
0: बिल्कुल कब आएगी पता नहीं, लेकिन मौसम हो जाएगा स्टूडियो में, बिकॉज वीर धवन आ चुके हैं। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।

पेशें अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक और आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% निर्यात निशुल्क हुआ। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए होमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवाहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तथा राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायक गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। होमुज में जहाजों का ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से शुरू की। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है और राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बर्मिंगम में खेले गए पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कर कार्डिफ में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज होगा। तो ये तो थे अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो।

0: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर एक बार फिर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।
1: किस्मत

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और कई हमारे दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबका तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

और अनिल शर्मा जी हमारे साथ, हमें उन्हें कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। लिखती हैं कि दूसरों के पहले खुद पर भरोसा करें, दूसरों की गलती निकालने से पहले खुद की कमियां ढूंढा करो, खुद की शिकायतें सुनने की हिम्मत रखो।

तुम्हें कुछ कहे तो दूसरों को सुनो, फिर अपनी बात कहो। ये उन्होंने हमारे साथ ये ज्ञान की बात साझा की है। थैंक यू सो मच अनिल शर्मा जी। और हमारे साथ कई और हमारे लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली NCR में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या खबरों का जो हम पिटारा लेकर आए हैं आपके साथ, वो आपके साथ हम पिटारा खोलने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि दिल्ली वालों को उमस से जल्द मिलेगी राहत। 19 और 20 जुलाई को झमाझम बारिश का अलर्ट है। दिन भर गर्मी तो होती है ना, तो लोग भी परेशान होते हैं कि ऐसा कब कब कब हमें राहत मिलेगी। तो दिल्ली में 19 और 20 जुलाई को मध्यम से भारी वर्षा का पूर्व अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली वाले तीव्र गर्मी और जो उमस है ना, उससे बहुत जूझ रहे हैं। और जबकि मंगलवार को पालम में हल्की वर्षा दर्ज की गई है ना, और इंतज़ार तो है, लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच 19 और 20 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली में अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हालांकि इससे पहले भी छुटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन उक्त दो दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। हाँ, दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है, इससे तापमान में वापस गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। तो फिलहाल हम अपने गीतों की वर्षा कर देते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है दिल्ली NCR गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर धवन।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दिल्ली मेट्रो की नई पहल। जी हाँ, यात्रियों के पुराने कपड़ों के सही उपयोग के लिए दिल्ली के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर अर्पण केंद्र खोले जा रहे हैं। ये क्या है अर्पण केंद्र, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दिल्ली मेट्रो ने पुराने कपड़ों के पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्पण नाम से एक विशेष पहल शुरू की है। इस परियोजना के तहत 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर ये केंद्र बनाए गए हैं जहां नागरिक सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं जो उनके उपयोग में अब नहीं है, उन्हें नहीं उपयोग करना चाहते। इसका उद्देश्य है कि अनुपयोगी कपड़ों को रिसाइकल और अपसाइकल करके जरूरतमंदों के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना। और ये 10 मेट्रो स्टेशन कौन से हैं, जो पहला चरण है उसमें यह सुविधा है शाहदरा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और मालवीय नगर, हौसखास, द्वारका, मोहन स्टेट, लाजपत नगर, मयूर विहार फेज वन, पंजाबी बाग वेस्ट और शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है। और स्टोर और कियोस्क भी है जहां कपड़े जमा करने के केंद्र के अलावा रिसाइकल और अपसाइकल किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए बूथ और कियोस्क भी लगाए जाएंगे। तो है ना कि पॉजिटिव खबर। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन AIR FM रेनबो, आकाशवाणी FM रेनबो पर दिल से दिल तक।

और दोस्तों, अगली खबर जो मैं दिल्ली वालों के लिए लेकर आया हूं वो है कि दिल्ली को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने कई प्रमुख कॉरिडोरों पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली की तीन सबसे व्यस्त सड़कों मथुरा रोड, रोहतक रोड, पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर और MG रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है, जिससे यात्रा का समय 30-40% तक कम होने की उम्मीद है। और इनमें प्रमुख सुधारों की सूची इस प्रकार है कि NHAI द्वारा तीन प्रमुख कॉरिडोरों का कायाकल्प होगा, जिसमें मथुरा रोड जो कि 15 किलोमीटर लंबा है, आश्रम से बदरपुर तक का सफर सिग्नल फ्री करने के लिए तीन फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, रोहतक रोड, पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, भारी यातायात वाले इस 17 किलोमीटर के मार्ग पर प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, MG रोड जो कि मेहरोली गुड़गांवा, इस व्यस्त रूट पर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए विस्तृत परियोजना की DPR रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और सिग्नल फ्री और इंटरचेंज टनल प्रोजेक्ट भी हैं कई ऐसे, जैसे कलिंदी कुंज जंक्शन नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाले इस व्यस्त चौराहे को जाम से स्थायी राहत के लिए NHAI ने दो तरफा टू वे फ्लाईओवर को मंजूरी दी है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज, ये भी जो है इसको भी ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर भी काम चल रहा है, और यू टर्न की नई तकनीक को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे भारी जाम वाले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट की जगह

टू बैक यू टर्न बनाने की योजना है। दिल्ली की 25 प्रमुख सड़कों पर फ्लाईओवर के बिना यातायात को सुगम बनाने के लिए यह नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और है ना ऐसा कि अगर दिल्ली ट्रैफिक मुक्त होगी तो कितना स्ट्रेस दूर होगा और आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। और दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक अपडेट इस वक्त है, अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या कहीं और किसी काम से जा रहे हैं और उस वक्त आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हैं या फिर ट्रैफिक स्मूथ है, तो आप हमें तमाम जानकारी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। अपने नाम और जगह के नाम के साथ आप हमें भेज सकते हैं फिलहाल आपके लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे हैं और ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें, अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो प्लीज़ उसको फॉलो करें, रुकें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि आप फॉलो करेंगे आपको देखा देखी और लोग भी जो हैं उस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखते हुए ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और हमारे एक लिसनर ने बड़ा ही प्यारा थॉट लिखकर भेजा है। ये भेजा है, पहले थॉट मैं आप पढ़ लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको कि किन्होंने भेजा है। ये थॉट भेजा है कि जिनसे भी मिलिए मोहब्बत से मिलिए, जिससे भी मिलिए मोहब्बत से मिलिए, लोग बताते नहीं है मगर तन्हा बहुत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तन्हाई को दूर करने के लिए 2400 घंटे आपके साथ रहता है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। तो कभी भी अगर आप तन्हा हैं तो बस ट्यून इन कीजिए, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से तो हम दुनिया के किसी भी कोने तक आपके पास जुड़े हुए हैं, आपके साथ, आपके दिल की धड़कनों के साथ, दिल से दिल तक। और ये जो हमें जो थॉट है इतना प्यारा सा, ये लिखकर भेजा है किन्होंने, ये भेजा है हमें राजेश जी ने, एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हमें भेजा है, थैंक यू सो मच। और राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से, वो भी हमें सुप्रभात लिखकर भेज रहे हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ डॉली भी जुड़ी हुई हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और अगला जो हमें और भी एक हमें मैसेज भेजा है, ये किन्होंने भेजा है, अजय ने झारखंड से हमें मैसेज भेजा है। और हमारे और एक लिसनर हैं कस्बा कनौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरीन, फरहान, फरिया, ताहिरा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ कह रहे हैं कि हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल द लवली।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। दोस्तों, आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इस वक्त अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे कैसा ट्रैफिक है आपके रास्ते में, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेज दीजिए और हो सकता है कि किसी और को भी कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं तो अगर कोई उस तरफ आ रहा है जिस रास्ते पर आप हैं तो वो अवॉइड कर सकता है। तो आपकी छोटी सी मदद से दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और फ़ायदा हो सकता है। और फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR पे।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

और दोस्तों, अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी, वो है कि स्कूलों के लिए नया डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने लगभग 15 स्कूल के प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए ईडीयू लाइफ 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इससे शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार आएगा। नई नई तकनीक है, नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं ताकि जो नया चीजें हैं और वहां पर कुछ नया होगा और इससे जो है डिजिटल जो युग है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है एमसीडी में भी, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और हरियाली के लिए व्यापक अभियान है। दिल्ली और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। यह शहर के पर्यावरण और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आपको बता दें कि अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे गौतम गौर एक बार फिर। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और कुछ हमारे लिसनर्स ने हमें मैसेज लिख के भेजे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग दिल्ली और सभी लिसनर्स को हमारा नमस्कार कहिएगा। रविंदर लेखरा कह रहे हैं, इन्होंने सिरसा हिसार से हमें मैसेज भेजा है। युवराज चौहान ने हमें मैसेज भेजा है बुरहानपुर से। और कासगंज यूपी से हमें मास्टर राधेश्याम ने मैसेज भेजा है। तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है आप सभी का जो इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और कई हमारे दोस्त घर पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो उनको भी हम नमस्कार कहना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव नोट के साथ इस दिन की शुरुआत कीजिए। और अब अपने दोस्त वीर दमन को इस प्रोग्राम से विदा कीजिए। देखिए, हम भी गौतम गौर जी की तरह हम भी राइम बनाना शुरू कर दिया है हमने भी। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूँगा 17 तारीख को, ठीक है, शाम को मैसेज मसाला मिक्स में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा और यही कहते रहिएगा कि आई एम द बेस्ट। बाय एंड टेक केयर।

और समय हो गया है अब समाचार का। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। कोयला और खान मंत्री जी श्री किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से शुरू की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। बर्मिंगम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा और दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल, हम तो आपके आशिक हैं सदियों पुराने और नहीं चलेंगे कोई भी बहाने। आ गए हैं दिल चुराने क्योंकि दिल के तराने गाने नए पुराने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। वंस अगेन आरजे गौतम जुड़ चुका है आपके साथ बैक टू बैक सुपर।

छेड़ते रहेंगे आपके दिलों के तार और बढ़ता रहना चाहिए प्यार, लेकिन आई हेट लव स्टोरीज दिल से दिल तक, ये प्यार परवान चढ़ते रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: बिल्कुल, और दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, यार शो में रौनक आ जाती है।

अगर कोई आपके मन को चुरा कर चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोई आपके मन को चुरा ले तो उसे क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा, आसान भाषा में कहें तो मंचूरियन। वेल, खाने पीने की बात नहीं करते, टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम करण अर्जुन।

नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम। टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग, दिल की तरह निकाले नए पुराने, किशोर कुमार की आवाज में। बने रहिए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं 102.6 FM, दिल से दिल तक।

इलाज का उपदेश भी यही है कि दिल लगाने से बेहतर है आप पेड़ लगाएं, बिकॉज वो घाव नहीं छाव देते हैं। वेल मजाक कर रहा हूं, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। वेल डिटैच कीजिए अपने आप को और लाइफ में आगे बढ़िए। वेल जैसे मुझे अभी जाना पड़ेगा डिटैच होके। जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो, नाउ कैप्टन जैक स्पैरो और आज गौतम इज साइनिंग आउट। लेकिन उत्कर्ष आने वाले हैं स्टूडियो में वेस्टर्न म्यूजिक लेकर और फिर कंचन बॉलीवुड ट्रेंड्स लेकर। लेकिन क्या कह रहे हैं कुणाल आपसे, सुन लीजिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर लिसनिंग टू मैचलेस म्यूजिक आवर। उत्कर्ष शरण इज हियर टू ब्रिंग यू इनक्रेडिबल म्यूजिक टू स्टार्ट योर डे टू इन इंग्लिश एंड हिंदी। So let's begin with something as soft as the clouds in the sky today. Rainbows by John Travolta.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: It is time for our first Hindi song of the hour, and true to the mood, we give you Rim Jhim Gire Sawan from the movie Manzil, sung by Kishore Kumar, with music by R.D. Burman and lyrics by Yogesh.

0: Diana Ross talks about figurative mountains, of course, from the small daily annoyances to old wounds that keep us down. But with the commute, it's a different thing. Flyovers, exits, potholes, and whatnot. So, keep your eyes on the road as we take a very short break.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
0: Most people like to use their monsoon day offs to travel outside the NCR. But there is a charm in the washed down pillars of Connaught Place, the wet stone of old Lodhi tombs, and other such things that make Delhi just as beautiful. And so, here's a homage to the city with Billy Joel's You're My Home.

होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार। 11 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। 99% भारतीय निर्यात शुल्क नहीं लगे।

जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पाद सूचकांक ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहले भारत पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा और अंत में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी बिल्कुल बिंदास होकर आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल स्वस्थ मस्त, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ और एफएम रेनबो के साथ, बिल्कुल दिल से दिल तक। अब देखिए ना, सिनेमा जो है ना, हम सब के जीवन में रची बसी होती है। अगर सिनेमा ना हो तो शायद हम खुद को, अपने प्यार को व्यक्त करना भी नहीं सीख पाएंगे। शायद ऐसी हमारी एक आदत हो जाती है। तभी तो फिल्मी दुनिया की खबरों को समेट कर हम आ जाते हैं एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक, प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

कसम से गोविंदा की फिल्म देखकर तो वैसे भी फर्स्ट क्लास हो ही जाना है, क्योंकि बुजुर्गों के साथ बच्चों के साथ अगर गोविंदा की फिल्म देखी ना तो दिन बन जाता है। वैसे गोविंदा फिल्मी दुनिया से थोड़ी सी दूरी उन्होंने बनाकर रखी है, लेकिन उनकी ज़बरदस्त वापसी हो रही है। बैक टू बैक उनकी दो फिल्म की तैयारियाँ चल रही हैं, और वो फिल्म है, एक फिल्म है रूपा और दूसरी है दुनियादारी। इन फिल्मों से वो कम बैक कर रहे हैं और ज़बरदस्त वापसी होगी, इसका इंतजार तो हम सबको है। वैसे इन फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी गोविंदा ही हैं, और साथ में उनके साथ एक नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार हैं, और देखना होगा कि गोविंदा इस फिल्म में कितना हंसाते हैं। वैसे गोविंदा ने बॉलीवुड से अपनी बहुत सारी शिकायतें जो है ना वो जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। जी गोविंदा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे बॉलीवुड में कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑडियंस ने आपको बहुत बहुत अधिक प्यार दिया है। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं आपके साथ कंचन।

बिल्कुल, इस बारिश के मौसम में तो कहीं ना कहीं घूमना बनता है। वैसे मौसम जो है ना थोड़ा उमस भरा है, लेकिन शाम होते होते मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

और बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड सरताज के सवाल का आपको बहुत अधिक इंतजार होता है, बेसब्री से इंतजार आप कर रहे हैं। तो आपके लिए फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही आसान सा सवाल होता है और जो दोस्त सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचा देते हैं ना, वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो आज का सवाल जरा ध्यान से सुनिए, जरा प्यार से सुनिए। और आज का सवाल ये है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में राहुल यानी शाहरुख खान की दोस्त काजोल का नाम क्या होता है? फिल्म में राहुल की छोटी सी बच्ची का नाम भी वही रहता है जो काजोल का नाम होता है। तो आपको अपना उत्तर हम तक पहुंचाना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी, आपको भी उत्तर मिल ही गया, बिल्कुल मिल गया है। बहुत सारे उत्तर हम तक पहुंचने लगे हैं, लेकिन जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं एफएम रेनबो के साथ, उनके लिए सवाल एक बार फिर से हम दोहराते हैं। सवाल ये है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में राहुल यानी शाहरुख खान की दोस्त काजोल का नाम क्या होता है? फिल्म में छोटी सी बच्ची यानी शाहरुख खान की जो बेटी होती हैं उसका नाम भी वही होता है जो काजोल का होता है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। मैं आपके साथ कंचन, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

बाद भी उनके पास बड़े बैनर की फिल्मों की कोई कमी नहीं है और इन दिनों वो करण जौहर के बैनर तले फिल्म लग जा गले की शूटिंग में बिजी हैं। और इस बीच डायरेक्टर अहमद खान ने कहा है कि वो टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर को लेकर नई जॉम्बी कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ना पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म बनने जा रही है, इसका फोटोशूट भी हो चुका है और अब बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको फाइनल करना है और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी और जल्द ही इसकी शूटिंग होगी। और उन्होंने बताया कि टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर की जोड़ी पर्दे पर दिखेगी। वैसे टाइगर श्रॉफ, बहुत सारे अंकल जी पूछ रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ कौन है, तो भाई जैकी दादा के बेटे हैं टाइगर श्रॉफ। और उनकी जो बॉडी है ना वो जबरदस्त है, और क्या कहें, उनकी एक्टिंग तो आप पर्दे पर जाकर देखेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो फिल्म शनाया कपूर के साथ उनकी आएगी वो कैसी होगी, उसमें वो क्या कुछ खास दिखा पाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आप भी जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी सवाल जो हमने पूछा है ना उसका उत्तर हम तक पहुँचाइए। इंतज़ार कर रही हूँ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: यह है आपका FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हम बिल्कुल आ गए हैं एफएम रेनबो पर और प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। बहुत सारे उत्तर हम तक पहुंचे हैं। वैसे बॉलीवुड सरताज की घोषणा कर दें क्या? कर देते हैं, चलिए। तो विनोद सोनी जी ने सही उत्तर पहुंचाया है और इरशाद अशरफी जी ने भी नागौर से सही उत्तर पहुंचाया है। प्रकाश जोगिया जी का भी सही उत्तर है। वैसे आजकल लोग गलत उत्तर बहुत कम पहुंचाते हैं। अंजलि शर्मा धर्म भाटिया जी रोहतक से कह रही हैं वैसे सही उत्तर है क्या है, थोड़ी देर में बात करेंगे। कंचन जी उनका नाम कृष्ण कुमार मिश्र है, दिल्ली में रहते हैं और आज की बॉलीवुड सरताज का उन्होंने सही जवाब पहुंचाया है। नवदीप शर्मा जी ने हरियाणा से सही उत्तर हम तक पहुंचाया है। एक उत्तर आया है नैना, वो कह रही हैं जी ये बिल्कुल गलत उत्तर है। और मेरठ से शंकर जी ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज हम तक पहुंचाया है और लेकिन सही उत्तर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और एक जो हमारे दोस्त हैं ना वो कहते हैं हाय हाय हाय हाय, इतनी बार उन्होंने हाय पहुंचाया है जी। आप अगर उत्तर कुछ भी लिखते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। ऋषु कटारिया पवन कटारिया जी का भी सही उत्तर हम तक पहुँचाया है। और गुड मॉर्निंग कंचन जी, ये सही उत्तर पहुंचा रही हैं कौन? ये सही उत्तर जिन्होंने भी पहुंचाया है ना, अच्छा शालू जी ने पहुंचाया है शादीपुर से, उनका भी सही उत्तर है। वैसे बहुत सारे लोग नैना कह रहे हैं और बहुत से लोग खुशी कह रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। वैसे आज के जो बॉलीवुड सरताज है ना वो मधेपुरा से बन रहे हैं, बिहार से, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कई बार हमने उन्हें कॉल किया लेकिन वो हमारे लिसनर हैं राजेश कुमार जायसवाल जी, उन्हें बॉलीवुड सरताज बनने पर हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। वैसे सही उत्तर क्या है? सही उत्तर अंजलि है, अंजलि शर्मा। और शाहरुख खान की जो बिटिया होती हैं छोटी सी, उनका भी नाम होता है अंजलि। शायद अपने दोस्त से प्रभावित होकर वो अपनी बेटी का नाम भी अंजलि रखते हैं फिल्म में। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और नितिन माथुर जी ने भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंचाया है लेकिन वो हमसे जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर से शेख अनवारुल खान ने, पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर कई बार लिखकर हम तक पहुंचाया है। वैसे आप सभी जुड़े एफएम रेनबो के साथ, इसी तरह से जुड़े रहिए, आनंद लीजिए और बहुत खुश रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। आप सभी जुड़े इस प्रोग्राम के साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सही जवाब है अंजलि और आज के हमारे बॉलीवुड सरताज राजेश कुमार जायसवाल जी। जायसवाल जी आपने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म रेनबो की तरफ से। जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

मैं भी अभी बिल्कुल हवा की तरह चली जाऊंगी क्योंकि प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स बस खत्म होने वाला है, बस कुछ मिनट। लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र वर्मा जी, अजय कुमार, प्रवीण मिश्रा जी, सुनीता शर्मा जी, मोहम्मद दिलशाद, नीलम, राजीव कुमार, आशुतोष, नितिन माथुर, उमेश कुमार, लोकेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से, और इन सभी दोस्तों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए मस्त होकर FM रेनबो के साथ। वैसे अगस्त का जो महीना है ना, बहुत सारी फिल्म्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो 7 अगस्त को राजकुमार राव की फिल्म प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी 7 अगस्त को रिलीज होगी, और इसके ठीक एक सप्ताह बाद रिलीज होगी यानी स्वतंत्रता दिवस वाले वीकेंड में जो फिल्म होगी वो होगी सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947, और उसके बाद आवारा 2 ये फिल्म भी रिलीज होने वाली है। तो बहुत सारी फिल्म्स जो है अगस्त के महीने में रिलीज

चीज होगी, इस पर भी हम बात करेंगे कभी और। इसी तरह से जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, बिल्कुल खुश होकर मौसम का आनंद लीजिए, अपने बुजुर्गों का हाथ थामे रखिए और बच्चों के साथ जुड़े रहिए बहुत ही प्यार से। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: Have you learned a new skill recently? It could be something as routine as cooking, or could be something as cool as vlogging, or even learning a new language. Tell us all about it at 9868107070 on WhatsApp while we take a very short break.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक ये है भारत के सोल्जर्स इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: Mr. Samir from Delhi is currently listening to us and says, in this rapidly changing job market, I think one should always be ready to upgrade skills. You lose when you become comfortable. That is a very encouraging thought effectively communicated by Mr. Samir. Of course, teamwork and communication have always been crucial skills. After all, a colleague who doesn't listen and refuses to cooperate isn't exactly the perfect friend. Yes, we all know how to talk, but improving on small things that end up causing big improvements can be very helpful. Next up, Your Place or Mine by Venga Boys.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: For those just joining us, this is 102.6 Akashwani Rainbows, Play It Cool. And today we are talking about which skills can give you a leg up in today's world and how to get better at them. So if you have any suggestions in mind, let us know on WhatsApp as we play For Good by Cynthia Erivo and Ariana Grande.
8: I'm limited.
9: Just look at me.
8: Not with your eyes. With theirs.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: Remember when everyone got mad at you, even though you were right? Yeah. Skills also include emotional intelligence. So, be sure to learn the art of reading the room. On that note, here's The Visitor by Sienna Spiro.

नमस्कार। दोपहर के एक बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये समझौता व्यापार और निवेश के लिए नए आयाम खोलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किए गए अपराधों के ट्रायल के लिए एक विशेष न्यायालय गठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धा

अंजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार जारी रखने की आवश्यकता दोहराई। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम के महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान है। इससे कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ की संभावना है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और अंत में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं मानसून के आते ही बहुत ही स्वस्थ होंगे आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ और बच्चों के साथ, और दिल से जुड़े होंगे FM रेनबो पर दिल से दिल तक। वैसे मानसून में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, बारिश की बूंदें, हरियाली, मानसून से जुड़े तरह तरह के पकवान, त्यौहार। लेकिन मानसून आते ही सेहत से जुड़े चैलेंजेस भी बहुत अधिक होते हैं, और उनमें से एक है डेंगू। और डेंगू का नाम सुनते ही हम सबको डर लगने लगता है। तो आज मानसून में डेंगू और दूसरे तरह के बुखार में कैसे सुरक्षित रहें, इसी पर बात होगी। और हमारे खास मेहमान हैं स्टूडियो में डॉक्टर विपिन कथूरिया। आप पैथोलॉजिस्ट हैं और FM रेनबो के आज के खास मेहमान। सर, FM रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: सर, जब डेंगू की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। तो डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आखिर डेंगू के कारण क्या हैं?
2: डेंगू के कारण, पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। डेंगू के कारण बहुत सारे हैं। बेसिकली डेंगू ये एक वायरस इलनेस है जो कि एक मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, और ये जनरली मॉनसून और रेनी सीजन में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि मॉनसून और रेनी सीजन इसके ग्रो करने के, इसको ब्रीड करने के लिए, इसकी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। बेसिकली अपने को इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आस पास पानी इकट्ठा ना होने दें, स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, उनके जो लिड्स होते हैं, उन्हें कभी भी ओपन मत रखें, उन्हें क्लोज रखें। जो ऊपर वाटर है, जो हमारे डेजर्ट कूलर्स हैं, उनको हमेशा क्लीन रखें, वीकली उन्हें क्लीन करते रहें। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्रॉपरली यूज़ करें रेनी और मॉनसून सीजन में। मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें जितना हो सकता है। फुल स्लीव्स कपड़े डालें घर में रेनी मॉनसून सीजन में, और बच्चों को फुल स्लीव्स, बच्चों को भी फुल स्लीव्स, और मतलब कोई भी हाफ स्लीव्स कपड़ा ना दें, फुल स्लीव्स कपड़ा उनको जरूर पहना के रखें।
1: जी दोस्तों, तो अगर आप भी सर से कुछ जानना चाहते हैं डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में या वायरल बुखार के बारे में, तो जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ और फोन मिलाइए। हमारे फोन

से 2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1084। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9868107070। मैं आपके साथ कंचन और ये है आपका FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया और आज बात हो रही है डेंगू और दूसरे तरह की जो बुखार इस मौसम में होते हैं। सर, डेंगू की बात आती है तो डर लगता है और दूसरे तरह के बुखार जो होते हैं ना वो भी बहुत तकलीफ देने वाले होते हैं, तो कैसे पता चले किसी को कि डेंगू है या फिर वायरल है या फिर मलेरिया है?
1: पहली बात तो डरने की कोई बात पहली बात तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगर एनी मानसून सीज़न आता है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई इलनेस ना हो या कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी हो जाती है तो इसके लिए हम कैसे इसको डायग्नोज करें या कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसके लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे आइडिया होता है कि हमें क्या वायरल इन्फेक्शन है या डेंगू है क्या मलेरिया है। तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। डेंगू में जनरली प्लेटलेट काउंट लो होने ज़्यादा

0: होने लग जाता है। अदर अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है इनको।
1: जी, अगर किसी को वो डेंगू हो जाए तो सबसे पहला जो है वो उनके परिजनों का क्या कर्तव्य होता है, क्या करें? क्योंकि बहुत
0: जनरल
1: जोर से थरथराहट होती है, घबराहट होती है।
0: डेंगू में जनरली सब हाई फीवर, बहुत बहुत हाई फीवर होने के चांसेस रहते हैं, मसल पेन, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, आई के पेन, आई के नीचे दर्द होने, आई के रीजन में दर्द होने लग जाता है, हेडेक्स बहुत होते हैं, वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली जो जो भी गार्जियन है या पेरेंट्स हैं किसी के, तो उन्हें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एक तो पैनिक नहीं होना, और दूसरा उन्हें हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, उन्हें फ्लूड फ्लूड देते रहना है। बेसिकली डेंगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्लूड मैनेजमेंट की वजह से होती है, तो जितना हो सकता है हमें उनको हाइड्रेटेड रखना है, मेडिकल जो अपने फिजिशियन है, मेडिकल की कंसल्ट करना है, उनसे सुपरवाइज करना है, उनसे डिस्कस करनी है चीज़ें,
1: जी
0: उसके
1: सर,
0: बाद घबराना नहीं है।
1: हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, इनसे हमारा संपर्क। हेलो जी, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप फोन मिलाएं तो लाइन छोड़कर जाए नहीं, उससे परेशानी होती है। आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गानों की फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ डॉक्टर विपिन कथूरिया हैं। सर, वायरल जब हो जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि अभी मौसम भी वायरल का है, तो इसमें क्या किया जाए?
0: वायरल में भी फीवर, बोन वायरल में फीवर होता है, जॉइंट्स पेन होने के चांसेस रहते हैं। अपने तरफ से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, हाइड्रेटेड रहें, पानी जितना ज़्यादा ज़्यादा पी सकते हैं उतना अच्छा है बॉडी के लिए। कोई भी वायरल फीवर है तो अपने फ्लूड को मेंटेन रखें, फ्लूड अंदर बैलेंस को मेंटेन रखें। सिम्टम्स लगभग वायरल फीवर में सबके सेम आते हैं, बट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए
1: जी
0: इसकी।
1: दोस्तों, मानसून आते ही सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे ही घर के किसी कोने में, छत पर या हमारे बगीचे में ही मच्छर जो है पनपते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ये छोटा सा मच्छर जो है ना, कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी तकलीफ दे सकता है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, जब किसी को डेंगू हो जाए तो कैसे उसकी देखभाल करें?
0: डेंगू के लिए देखभाल सबसे पहले, मैंने पहले ही बताया, मैंने उनका जो वाइटल्स हैं, वाइटल्स में जैसे बीपी हो गया, उनका उनका बीपी अगर स्टेबल है, फीवर अगर उनका राइज नहीं हो रहा, और फ्लूड अगर प्रॉपरली आप उनको फ्लूड दे रहे हो, तो ये अगर ये तीन चीज़ मेंटेन है तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। इन तीन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए कि उसका फ्लूड मेंटेन रहना चाहिए। बेसिकली डेंगी में सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं फ्लूड इम्बैलेंस के, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना चाहिए पेशेंट, शुड बी हाइड्रेटेड होना चाहिए पेशेंट।
1: जी
0: जितना आप हाइड्रेटेड, जितना आप उनको फ्लूड देंगे अकॉर्डिंग उसके बॉडी वेट के हिसाब से हमें उसको फ्लूड देते रहना चाहिए।
1: जी सर, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
1: जी, आप अपना नाम बताएं और सर से सवाल पूछें।
2: अंशु कुमार मैम, नमस्कार। सर को भी मेरा नमस्कार।
1: जी,
0: नमस्कार जी।
1: अपना सवाल
2: जी,
1: बताएं।
2: हमारा ये सवाल है कि अगर बुखार से सुरक्षित तो कैसे रह सकते हैं, और बुखार अगर डेंगू किसी को हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे हो सकती है?
1: बुखार से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और किसी को,
2: हाँ,
1: जी,
0: और
1: कैसे देखभाल करें डेंगू हो जाए तो?
0: डेंगू हो जाए तो बुखार से तो सुरक्षित रहने के लिए हमें उसको बुखार की दवा देनी चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, आसपास जो आपके डॉक्टर्स हों जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो उनसे आप डिस्कस करो, और अगर उनके जो बुखार के अलावा कोई ज़्यादा अगर उनको और परेशानी नहीं है, या ठीक सिर्फ बुखार ही बुखार है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हमें उनको घर पे सुपरवाइज कर सकते हो आप, उनको डॉक्टर से डिस्कस करके, बस उन्हें फ्लूड मेंटेन रखना है। आप उनको फ्लूड जितना मात्रा में पानी दे सकते हो उनको पानी देना है, कोकोनट वाटर देना है, सूप दे सकते हो, जूसेस दे सकते हो अगर वो जूसेस ले सकते हैं, ORS देना है उनको। तो घर पे रह के मेन जो मैनेजमेंट है उनका, हाइड्रेशन का है, पानी उनको जितना ज़्यादा आप देंगे उतना अच्छा रहेगा। वाइटल्स, अगर बीपी वगैरह उनका स्टेबल है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बुखार तो इसमें आता है, बुखार तो इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है।

0: बुखार के लिए जो दवाई होती है वो दवाई देनी होती है।
1: जी एक दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, प्लीज आप लोग लाइन छोड़कर कहीं ना जाएं, इससे बहुत अधिक परेशानी होती है। और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज बात हो रही है डेंगू की। सर, अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार है और वो पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाए, तो उस स्थिति में किस तरह से निपटने की जरूरत है?
0: बेहोश हो जाए तो अगर उसका अगर पेशेंट का बीपी का लेवल भी डाउन है और अदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उनको, पेन अपडमन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है उनको, हेडेक भी सीवियर है, अगर कहीं से गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ये भी सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, अगर ये हैं तो हमें उसको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए उस पेशेंट को तुरंत।
1: जी
0: अगर फीवर डाउन नहीं जा रहा तो हमें हॉस्पिटलाइज होने कराना चाहिए।
1: जी पैंथर तोमर जी पूछ रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया टाइफाइड के लक्षण में क्या अंतर है? डेंगू होने पर कई लोग कीवी पपीते के पत्तों का रस और नारियल पानी पीने लगते हैं, क्या ये सही है? और क्या किसी व्यक्ति को एक बार होने के बाद दोबारा भी डेंगू हो सकता है? तोमर जी का ये सवाल है।
0: डेंगू के जो टोटल टाइप्स होते हैं 4 सब टाइप्स होते हैं इनके, तो डेंगू 4 बार होने के चांसेस हो सकते हैं। एक बार जब होता है तो उसकी एंटीबॉडीज बन जाती है, बट जरूरी नहीं है कि उसकी जो एक एंटीबॉडी बनी है वो उसकी 4 सब टाइप्स के लिए इफेक्टिव है, तो दोबारा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पपाया कीवी और कोकोनट वाटर, पपाया का ऐसे कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई स्टडी तो नहीं है कि इससे बेनिफिट होता है डेंगू पेशेंट्स में। कोकोनट वाटर ORS और आप सूप्स या अगर आप फिट हैं तो फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, तो ये सब तो एज ए मेडिकल सुपरविजन में आप ले सकते हो, ये इफेक्टिव होता है पेशेंट के लिए, डेंगू पेशेंट में हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए।
1: जी सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और सर से अपना सवाल पूछें।
2: मैं मोहम्मद कासिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी मोहम्मद कासिम साहब
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी
2: सर, मुझे पूछना यह है, जैसे आपने वायरल बुखारों की बात की कि इनके लैब से डायग्नोस कराना चाहिए, तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं बुखारों में, जैसे डेंगू में कौन सी जांच होती है, मलेरिया में, टाइफाइड में कौन कौन सी जांच की जाती है?
0: डेंगू में जब आपको बुखार आना शुरू हो गया, बुखार आने के 2 से 3 दिन के बाद आपको एक NS1 एंटीजन टेस्ट होता है वो करवाना चाहिए, और एक CBC कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। ये दो जब आपके बुखार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं उसके 2-3 दिन के बाद हमें ये टेस्ट करानी चाहिए, और 5 दिन के बाद भी एक टेस्ट करा सकते हो आप, एंटीबॉडी टेस्ट होता है IgM, वो भी आप करवा सकते हो। ये डेंगू में आपको जनरली टेस्ट कराने होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाना जरूरी होता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होता है उसमें, वो चेक करना होता है हमें उसका।
1: दोस्तों मौसम है
2: टाइफाइड
0: में भी, टाइफाइड का एक टेस्ट होता है IgM, IgG, उसका भी टेस्ट कराना होता है, वो भी एक टाइफाइड का एक टेस्ट होता है। मलेरिया का भी एक टेस्ट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का, और उनका वो भी आपको, मलेरिया के अलग टेस्ट हैं और टाइफाइड के अलग टेस्ट हैं बेसिकली, उसमें CBC दोनों में आपको करवाना होगा, दोनों में CBC आपको जरूर करवाना होगा। एंटीजन टेस्ट होता है
1: जी। मोहम्मद कासिम साहब, तो आपको अपने सवालों का जो उत्तर है वो मिल गया होगा। और दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने की भी एक जो है ना जद्दोजहद हम लोग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब है ना आपके साथ FM रेनबो पर, तो आप अपने सवाल FM रेनबो तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर, और फोन लाइन मिला सकते हैं 2342-1080, दूसरा नंबर 2342-1084। मैं आपके साथ कंचन और सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीत हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया और आज बात हो रही है डेंगू जैसे बुखार जो है ना जब परेशान करते हैं तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं डेंगू जैसी बीमारियों से। सर जब किसी को डेंगू हो जाए इसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन क्या बच्चों को और बुजुर्गों को भी डेंगू हो सकता है?
3: डेंगू किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग एडल्ट्स हैं उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको, किसी को भी डेंगू फीवर हो सकता है जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एज ग्रुप्स को नहीं होगा। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे ज़्यादा हैं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ ज़्यादा हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उनमें लक्षण और ज़्यादा सीवियर आते हैं।
2: जी, और इसी से जुड़ा एक सवाल हम तक पहुंच गया है। वो किशनगंज से ये मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को डेंगू या मलेरिया होने पर क्या जोखिम हो सकते हैं और उन्हें ये कितना

0: प्रभावित करती हैं?
1: डेंगी जो है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनमें जो सिम्टम्स आते हैं जैसे हाई फीवर, मसल पेन, बोन पेन्स, या वोमिटिंग या ब्लीडिंग्स होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी इन चीज़ों से इफ़ेक्टेड हों, फीवर उनका डाउन ना जाए, वोमिटिंग कम ना हो उनकी, पेन अपडोमेन में बहुत स्टार्ट तेज़ हो जाए, ब्लीडिंग्स भी ऐसे पेशेंट को हो सकती है ज़्यादा हो जाए, गम से, नोज से, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, ऐसे रेस्टलेसनेस ज़्यादा हो सकती है, वीकनेस बहुत रहती है ऐसे पेशेंट्स में, मेनली रेस्टलेसनेस और वीकनेस ज़्यादा रहेगी कंपेयरेटिवली टू नॉर्मल हेल्दी पर्सनस के। जो हेल्दी पर्सन है उससे डिफरेंट ये रहेगा कि वो रेस्टलेस ज़्यादा रहेंगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी ऐसे पेशेंट्स में
0: जी,
1: और सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स हैं वो सीवियर ज़्यादा रहेंगे।
0: सर, डेंगू की बात जब आती है तो एक बुखार और होता है चिकनगुनिया, जो कि बहुत तकलीफ देह होती है, तो कैसे लक्षण, कैसे हमें लगे कि ये चिकनगुनिया है? और
1: चिकनगुनिया और डेंगू में दोनों में फीवर बहुत हाई रहता है, मसल पेन, जॉइंट पेन दोनों में यही, दोनों के जनरल सिम्टम्स सारे ठीक सेम रहते हैं, आँखों में थोड़ा, चिकनगुनिया की आँखों पे थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा डालता है वो, बाकी टेस्ट करा के ही आइडिया हो सकता है कि दोनों में क्या, कि चिकनगुनिया है कि डेंगू है, बट जनरली सिम्टम्स दोनों के सेम रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये सेम मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो के से बाइट से ही या उसके काटने की वजह से ही होता है, और ये थोड़ा रेनी मॉनसून सीजन में ही इफेक्ट ज्यादा करते हैं।
0: सर, अपने घर की साफ सफाई तो हम लोग कर लेते हैं, घर को चमका लेते हैं, सजा लेते हैं, लेकिन घर के कोने कोने में कैसे ध्यान रखा जाए कि पानी का जमाव तो नहीं?
1: ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पानी जितना हो सके इकट्ठा ना हो, बारिश के टाइम पे तो खासकर साफ पानी में, और अपने डेजर्ट कूलर्स को रेगुलरली क्लीन करें रेनी वो मानसून सीजन में, पोर्ट्स हैं उनको भी क्लीन रखें, ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो वहाँ पे, रिपेलेंट्स यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, नेट्स यूज़ करें, फुल स्लीव्स हो सके घर में फुल स्लीव्स क्लोथ्स डालें, क्योंकि जो डेंगू का जो जो मॉस्किटो है ये ओनली मॉर्निंग से आफ्टरनून में थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा रहता है बेसिकली
0: जी। सर, कुछ लोग अपने आप दवाई खाने लग जाते हैं, बुखार की भी दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खाते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है?
1: ये बहुत खतरनाक है, बिना सुपरविज, बिना मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस के हमें कोई भी ऐसी मेडिकेशंस नहीं खानी चाहिए, और एंटीबायोटिक्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें, सब ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक तब देनी होती है जब कोई बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट किया हो, ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब हमारी इन्फेक्शन बढ़ गई है, उसमें और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस डेंगू के साथ साथ ऐड हो गई है, तब हमें बैक्टीरियल शुरू, तब हमें एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए, उससे पहले हमें एंटीबायोटिक नहीं शुरू करनी चाहिए। वायरल, वायरल फीवर के लिए वायरल, देयर इज नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स इन वायरल फीवर।
0: सर, तो डेंगू पर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपकी पसंद की बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे।

0: मानसून आते ही कई बीमारियां जो है ना हमें घेरती चली जाती हैं, और उनमें से एक है डेंगू, जिसका सबसे अधिक खतरा जो है वो मंडराता रहता है। किसी भी उम्र के लोग हों, वो डेंगू से बचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार हम शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर कब हमें परेशान कर देना ये पता नहीं चलता। सर, जब डेंगू की बात आती है, तो अगर किसी माँ को, यानी माँ अगर वो बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, और किसी को हो जाए डेंगू, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें होती हैं?
1: मुश्किलें हो सकती हैं, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अगर उनको होता है तो वही सेम ट्रीटमेंट, वही सेम मेडिकल मैनेजमेंट, वही सेम रहता है, अंडर आपके मेडिकल जो सुपरविजर, जो आपके डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करके सेम ट्रीटमेंट रहता है। सेम ट्रीटमेंट में कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, फीवर हाई नहीं होने देना, फीवर कंट्रोल करना है, वाइटल्स को स्टेबल रखना है, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर होता है तो सेम सिम्टम्स रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो सकता है कि थोड़ा सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं, बट कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है
0: जी।
1: और कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं
0: जी,
1: तो उनको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं अपने बच्चों को, इसमें कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है।
0: छोटा शिशु है, 1 महीने का 2 महीने का, उसे अगर हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: अपने जो बच्चों के, जो उनके पीडियाट्रिक्स, जो उनके बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनके सुपरविजन में सेम ट्रीटमेंट, जो सेम मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट है, सेम है इनका सब, चाहे बच्चों का हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ का हो, चाहे यंग एडल्ट्स का हो, बट अपने अंडर सुपरविजन ऑफ देयर डॉक्टर
0: जी। और एक सवाल आया है किशनगंज से पैंथर तोमर जी का, वो कहते हैं कि क्या डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियों के टीके उपलब्ध हो चुके हैं? यदि उपलब्ध हो चुके हैं तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं ये टीके?
1: कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीन डेंगू की अभी आ गई है, बट इंडिया में अभी अंडर ट्रायल है इसका, इस पर अभी वर्क चल रहा है, बट अभी देना या लगाना अभी शुरू अभी नहीं हुआ है, बट अदर कंट्रीज में देयर आर वैक्सीन्स
0: जी। कई बार देखा गया कि कुछ लोगों को बहुत अधिक उल्टियां होने लगती हैं बुखार में चाहे, लेकिन वो डेंगू नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और क्योंकि लोग बहुत घबरा जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अगर बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और कुछ खाना ओवर नहीं ले पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑरली मुंह से अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पेशेंट को आईवी के थ्रू इंट्रावीनसली हमें उसको देना चाहिए। उसके लिए उसके एडमिशन, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो बेसिकली
0: जी। सर, कई बार हम देखते हैं कि डेंगू जो है ना बिल्कुल फैलती चली गई मॉनसून में, खासकर जैसे हमने 2010 में देखा था दिल्ली में, हर एक दूसरे घर में डेंगू या चिकनगुनिया के पेशेंट थे, तो ऐसा क्यों हो जाता है?
1: ये इसलिए हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, इतना अर्बनाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स के लिए एक रेजिस्टेंस आ गया है, और फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो ये भी एक रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से डेंगू बढ़ता जा रहा है बेसिकली
0: जी।
1: क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से ट्रांसपोर्ट होके दैट कम्स बेसिकली, अर्बनाइजेशन इतनी है, पानी इकट्ठा हो रहा है चारों तरफ, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड की रेजिस्टेंस बहुत हो रही है, इस वजह से भी चांसेस हैं कि बढ़ रहे हैं इसके केसेस
0: जी। दोस्तों, हम बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर साहब की ही पसंद के गाने हम सुनवाते रहेंगे FM रेनबो पर, तो जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कथूरिया, और बहुत खुश हो रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
1: बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। जब आपकी पसंद के गीत कोई दूसरा प्ले करे तो कितनी
1: बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच
0: जी।
1: मेरी सारे जितने मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे आपने सारे आज प्ले करे
0: जी। सर डेंगू पर बात हो रही है तो डेंगू जो है उसको रिकवर होने में कितना समय लगता है किसी भी पेशेंट को डेंगू से?
1: डेंगू अगर आपको होता है तो जनरली 14 डेज तक हमें ध्यान रखना होता है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे। जो स्टार्टिंग में जब आता है तो स्टार्टिंग में फीवर एक से लेके 3-4 दिन तक फीवर रहने के चांस रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड डे के बाद जो टाइम होता है 3rd to 7th डे का, वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, और 7th to 10th डे होता है वो रिकवरी फेज होता है बेसिकली। बट कुछ लोगों में 14 डेज तक भी ये इसके साइन सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, बट जनरली 14 डेज तक हमें इसका ध्यान रखना होता है
0: जी। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो गर्भधारण की हुई है और बच्चे के रीढ़ में जो है गांठ है, तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि अभी बात हो रही है डेंगू की।
1: तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने जो आसपास जो

0: डॉक्टर हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करिए इसके लिए।
1: जी रंजीत कुमार जी, आज बात हो रही है डेंगू, मलेरिया और मौसमी बुखारों की। सर, एक बार अगर डेंगू किसी को हो जाए तो क्या बार बार होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डर तो बहुत लगने लगता है।
0: डेंगू की चार सब टाइप्स होती है, मैंने अभी बात हुई थी मेरी, तो चार बार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चार अलग अलग सब टाइप्स होती हैं। एक बार जब होता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी के अंदर, बट वो चारों स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव नहीं होती वो, तो होने के चांसेस रह सकते हैं।
1: जी, और जब किसी भी तरह के मौसमी बुखार या डेंगू से उभर जाए तो कैसे अपनी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कमजोरी तो बहुत अधिक हो जाती है।
0: गुड, अगर आपको कमजोरी वीकनेस है, अगर फिर आफ्टर डेंगू रह सकती है, क्योंकि डेंगू में बहुत इम्यूनिटी लो होने के चांसेस रहते हैं। अवॉइड स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए थोड़े दिन तक। अच्छा, हेल्दी फूड लेना चाहिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, प्रोटीनेशियस मील जो थोड़ा हाई लेना चाहिए, थोड़ा लाइट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, वो ज़्यादा लाइट फूड लेते रहें, हेल्दी फ्रूट्स लेते रहें, फ्रूट जूसेस लें अगर आपको, अगर कोई मेडिकल कोई डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है तो।
1: जी, और अगर किसी छोटे बच्चे को, स्कूल जाते हुए बच्चे को डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए, तो फिर कैसे देखभाल करनी चाहिए?
0: देखभाल जैसा मैंने पहले बताया कि हमें उनको ध्यान रखना है कि उनके जो फीवर है उनका राइज नहीं होना चाहिए, फ्लूड की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, ज़्यादा ज़्यादा फ्लूड देते रहें, फीवर राइज नहीं होना चाहिए उनके। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट आराम से घर रह के देख सकते हैं। अगर सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं या कुछ क्रिटिकली लगता है कि भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खा नहीं सकते, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया है, तब हमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है। इसमें कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है।
1: सर, शरीर पर रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं, वो किस तरह के बुखार में दिखाई देते हैं?
0: वायरल फीवर में जनरली रैशेस हो जाते हैं, बट डेंगू में भी होने के चांसेस रहते हैं, सब में ही रहते हैं, बट कुछ केसेस में नहीं भी आते, बट मैक्सिमम केसेस में रैशेस आते ही आते हैं, बेसिकली वायरल फीवर्स में रैशेस आने लगते हैं।
1: जी, और सर चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि बुखार एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो वो तोड़ देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, फिर लगता है कि, और थोड़ा डर भी लगने लगता है कि कहीं हम चपेट में ना आ जाएं, तो किस तरह से अपनी देखभाल करें, अपने आसपास जो है किस तरह का माहौल रखें, किस तरह से साफ सफाई रखें?
0: मैं मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट पैनिक इफ यू हैव फीवर एंड डोंट इग्नोर इट आइदर। अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट फ्लूड्स एंड टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन और प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग आर द कीज टू रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू।
1: जी, और सर आपकी पसंद के गीत बज रहे हैं आज FM रेनबो पर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और घरेलू उपाय जो है ना वो करने लग जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। कई बार लोग घरेलू उपाय जो भी है वो उसमें उलझे रहते हैं और बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। कुछ लोग झाड़ फूक, अंधविश्वास वाली चीजें जो है वो भी करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश?
0: मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ऐसा किसी भी चीजों में मत पड़िए। डेंगू का जो मेन जो ट्रीटमेंट रहता है हाइड्रेशन रहता है। हाइड्रेशन मीन्स कि आपको उसको फ्लूड देते रहना है, उसकी वेट के हिसाब से, जितना हम फ्लूड उसको देते रहेंगे उसके वेट के हिसाब से, वो सबसे मेन वो रहता है। फ्लूड कम नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, झाड़ फूस से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप फ्लूड उनको दो के रखोगे उसके वेट के हिसाब से, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और फीवर को नहीं बढ़ने देना, फीवर बढ़ता है तो वायरल लोड इंक्रीज होता है, तो फीवर को नहीं बढ़ने देना हमने। बाकी झाड़ फूस कुछ नहीं है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है, सिंपल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी।
1: सर, प्लेटलेट्स अचानक बहुत कम होने लगते हैं, तो इन सब से बचने के लिए क्या कोई खास फल जो है वो उसका सेवन जरूरी
0: ऐसा कोई है? ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई फल तो नहीं है कि हमें वो फल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा साइंस कहती है, बट जैसे पपाया जैसे बोलते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन कुछ भी नहीं है ऐसा, प्लेटलेट इससे बढ़ जाएगा या प्लेटलेट कम हो जाएगा, बट ऐसा जनरली फ्लूड मेंटेन रखना, आपको जितना फ्लूड ओवर दे सकते हो आप फ्लूड मेंटेन रखना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेंगू।
1: जी सर, लोग बातचीत में कहते हैं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें खून पानी हो जाता है, तो क्या ये सचमुच सही है?
0: खून पानी का तो मैंने ऐसा कभी

0: डिस्कशन आया नहीं मेरे सामने, बट प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है इसलिए थोड़ा सा लोग घबराते हैं। बट प्लेटलेट काउंट कम होना कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट घबराने से कम होने से कोई ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फ्लूड कम होता है बॉडी के अंदर, प्लाज्मा लीकेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए गम्स से, नोज से, यूरिन आउटपुट कम हो जाए बॉडी का, यूरिन कम आउटपुट कम रहे बॉडी का, तब एक ये मेजर डरने वाली बात होती है। पानी कम, पानी खून का कोई ऐसा वो नहीं है, बट बॉडी में फ्लूड अधिकतम मात्रा में रहना चाहिए।
1: जी सर, अभी अभी एक मैसेज आया है कि मेरी माँ, जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं और उन्हें डेंगू हो गया है, क्या किया जाए ऐसे में?
0: उनको आप उनके वाइटल्स, जो उनका बीपी है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें, उनका फीवर तो नहीं है उनको देखते रहिए, और उनका सीबीसी टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, वो जरूर कराते रहिए। उसमें हिमेटोक्रिट होता है, वो देखते रहिए रेगुलरली, हिमेटोक्रिट उनका राइज तो नहीं हो रहा, उनका प्लेटलेट काउंट कितना है। ये तीन चार चीज़ें हैं जो आप उनकी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करिए, बीपी मॉनिटर करिए, उनका फीवर मॉनिटर करिए, उनका सीबीसी मॉनिटर करिए, सीबीसी में हिमेटोक्रिट मॉनिटर करिए, उनका प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करिए, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करिए। अगर स्टेबल है तो कोई ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि कुछ उनको प्रॉब्लम होगी या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ईजिली रिकवर भी कर जाते हैं।
1: जी सर, चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: मॉनसून सीज़न है, मोर चांसेस, बहुत सारे इन्फेक्शंस, इलनेस के होने के चांसेस हैं, डेंगी, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने आप एक तो प्रॉपर जो आपके आसपास जितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसे इकट्ठा मत होने दीजिए, अपने डेजर्ट कूलर से उनके पूरा क्लीन करिए, कोई भी पोर्ट्स वगैरह है उसमें पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्रॉपरली यूज़ करिए, नेट्स यूज़ करिए घर में, तो ध्यान रखिए अपना।
1: जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, लेकिन इस प्रोग्राम के ठीक बाद 2 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना स्वाति गुप्ता के साथ, और 5 बजे होगा सेटेलाइट्स श्वेता शर्मा के साथ, 6 बजे मैसेज मसाला मिक्स जिसमें प्रवीण शर्मा आपके साथ रहेंगे, और मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखिए, और दीजिए मुझे विदा। जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लागू व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पर कहा कि ये भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा मानकों को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा परिषद के साथ एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। आज के हम कदम में हमने जोड़ा है हमारे साथ एक और हम सफर और नाम है इनका दीक्षा शर्मा। ये है डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से और साथ ही इनके पास सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली का भी एडिशनल चार्ज है। इनसे करेंगे हम आज बात और आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 में जो इस साल का है वो उसके ऊपर हम लोग एक विशेष तौर पे बातचीत करने जा रहे हैं इनसे और जो विषय रहेगा वो है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। जी हाँ, आगे आने वाले भविष्य में जो भी स्किल्स काम में आने वाली हैं खासतौर पर हमारे युवाओं के लिए जो बहुत ही उपयोगी हैं उसके बारे में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचा सकें। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है हम कदम।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और भाई, जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी हम सफर बन के हमेशा हमारे साथ साथ चलती हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें हमारी स्किल्स, हमारा करियर जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और उसका हमारी जिंदगी में इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि एक फोकस्ड एरिया की जब हम बात करते हैं तो वो होता है। आज है जी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और ये हर साल जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार, बेहतर कार्य और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम कहते हैं यानी कि उद्यमिता, इसके लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उसे प्रदान करने के लिए जो भी जरूरी किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करना और उसके लिए आगे का रोड मैप तैयार करना, इन सब चीजों का जो है ना काम करता है हमारा ये खास दिन। और इस दिन बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेटर्स और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ जो है मिलकर ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से आगे जाके इंक्लूसिव और सस्टेनेबल स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो की जानी चाहिए। एंड ऑब्वियसली ना केवल इसमें हमारे यूथ का, इसमें पॉलिसी मेकर्स का, इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि एक कौशल जो होता है, कौशल विकास, तो स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है पहले के मुकाबले, हम सभी जानते हैं। एंड ऑब्वियसली स्किल्स जो हैं आगे आने वाले समय में जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाने जा रही है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, छोटी छोटी सी तो ख्वाहिशें होती हैं हमारी, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जरूरत यह होती है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि अपनी मर्जी की जिंदगी जो है ना हम जीना चाहते हैं उसे हम जी सकें। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता कहां से खुलता है? ऑब्वियसली एकेडमिक से खुलता है, मगर उसके साथ साथ आजकल जो सबसे बड़ा हथियार है ना हमारे पास, इसका हथियार नहीं कहना चाहिए, मतलब जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, वो है स्किल्स। और आज जब वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, तो इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दीक्षा शर्मा हमारे साथ हैं, आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, इनके पास है बहुत ही काम की जानकारी। आइए जानकारी की तरफ चलते हैं। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, तो इस विषय पे हमारे युवाओं के लिए क्या खास जानकारी है आपके पास, और साथ ही साथ माई भारत के बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से हमारे जो श्रोता है उनको बताएं।
1: जी बिल्कुल, आज पहले तो मैं सभी जो हमारे देश के युवा हैं उन सबको संबोधित करना चाहती हूँ कि आज के स्किल्स डे पे अपने आप को डेडिकेट करिए अपने देश के लिए, जो कि विकसित भारत की ओर जा रहा है। तो अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, तकरीबन 8800 करोड़ की ये स्कीम्स हैं, जिसके अंदर हमारा स्किल इंडिया आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है, और इसके साथ साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आती है। ये सारी स्कीम्स भी लोगों के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप लोग इम्प्लीमेंट कर सके और आपको अच्छी जॉब्स मिल सके। अब प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि हमारे देश में 2-5% तक लोगों को ही स्किल्स प्रोवाइड हो जाती हैं, जो कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर स्किल्स हैं। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है कि ठीक है, हमारी तरफ से भी कुछ कमियां हैं अभी, कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, जो हमारी स्किल्स काउंसिल्स हैं उनमें अभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से काम, पर आपको भी अपनी तरफ से काम करना है, वो है कि आपको एक सशक्त और एक जागरूक सिटीजन बनना है। जब आप ये एक जागरूकता की तरफ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की हैं, पर हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ और मैं माई भारत में काम करती हूँ, तो माई भारत आपका एक प्लेटफॉर्म है जो कि सारे देश के युवाओं को, हमारी सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी इंडस्ट्री को, सबको जोड़ता है। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो माई भारत प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मौके हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उसकी वजह से

0: आप बहुत सारी जो सरकार की स्किल से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उन सब से वंचित रह जाते हैं। स्किल्स के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि हम लोग जॉब्स की बात करेंगे कि जॉब्स तो नहीं है, स्किल्स तो हमारे पास बहुत है, जॉब्स नहीं है। पर द प्रॉब्लम इज, ये सोचने की कोशिश करिए कि हम सिर्फ जॉब ढूंढे क्यों, जॉब सीकर क्यों बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, वो कहते हैं कि आइडिया आप दीजिए, साथ मैं दूंगा। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव स्कीम्स चलाई हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। वो स्टार्टअप इंडिया सिर्फ एक जुमला ही नहीं है, इसके अंदर आपको अपनी जो भी आइडियाज हैं वो लेकर आने हैं। और माय भारत के अंदर इस टाइम पे हमारे पास एसोचैम का एक इन्वेस्टमेंट कनेक्ट समिट चल रहा है, उसके बाद हमारा एक ब्रिक्स समिट अभी 2026 में होगा इंडिया की चेयरमैनशिप में, उसमें भी हम बहुत सारे आइडियाज को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और इनोवेशन के तरफ भी कदम बढ़ाया है, जिसके अंदर हम लोग अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करते हैं, हमारे कॉलेजेस में हैं इनोवेटिव आइडियाज, वहां आपने लेकर आइए और सोचिए कि आपको सिर्फ जॉब नहीं लेनी है, आपको दूसरों को जॉब्स प्रोवाइड भी करनी है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है दीक्षा हमें दी है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स की जब हम बात करते हैं, कौशल विकास हम जानते हैं कि पहले से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल्स का भी रोल बहुत प्रोमिनेंट होने लगा है अब आके। तो ये स्किल्स हासिल करने के लिए क्या क्या, या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर उसमें से कुछ पे आप रोशनी डाल सकें।
0: जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें 6वीं कक्षा से ही वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया है। तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये आदत डालें कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल चीजें उस पर भी फोकस करना है, तो हमारा जो है यूथ को अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी और वो अच्छे आइडियाज लेकर एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बनेंगे। दूसरी है हमारी स्किल इंडिया स्कीम। स्किल इंडिया के अंदर हमारे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं और बहुत सारी स्कीम्स, जैसे कि मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, वो सारी स्कीम्स इसके साथ कनेक्टेड है। हमारे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, हमारी आईटीआईज हैं, प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु स्कीम लॉन्च की थी जिसमें आईटीआईज को अपग्रेड किया गया। अब वो बहाना नहीं है कि हम आईटीआईज में नहीं जाएंगे कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अब हमें जो है आगे बढ़ना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा जो युवा है वो इसमें भाग ले चुके हैं, सर्टिफिकेशन ले गए, उन्होंने प्लेसमेंट भी हासिल की है। तो मैं सभी युवाओं से ये आग्रह करना चाहूंगी कि कृपया इन स्कीम्स का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा सशक्त युवा की ओर बढ़े।
1: जी दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर जब हम इन सभी स्कीम्स की बात करते हैं तो उसमें एक सवाल सबसे पहले उठकर आता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है फंडिंग। तो क्या इस तरह की भी जो जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम अभी आपने लिए हैं, क्या उसमें उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसी तरह का फंडिंग या किसी और तरीके का टेक्निकल सपोर्ट, ये सब चीजें भी हैं?
0: जी मैं बिल्कुल इसमें बात करना चाहूंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है नवाचार मंत्र। तो ये माय भारत पोर्टल पे भी अपलोड किया गया है। इसके अंदर जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आइडियाज दें, और प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है सभी एंटरप्रेन्योर्स से कि जो भी आप आइडियाज लेके आएंगे उसके लिए हम आपको टेक्नोलॉजी, जो फंडिंग सपोर्ट है वो सब हम लोग देंगे। उसके अलावा हमारे पास स्टार्टअप इंडिया बहुत सालों से चल रहा है और उसके साथ हमने कनेक्ट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि फिक्की और एसोचैम को। तो वो रेगुलरली सबमिट करते रहते हैं और हमारे युवा को प्रोत्साहित करते हैं कि आइए हमारे पास आइडियाज लेके आइए, पैसा और टेक्निकल सपोर्ट हम आपको देंगे।
1: जी, विश्व युवा कौशल दिवस जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है, इस दिन ये बहुत सी काम की जानकारी है जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम की है, और ऐसी ही जानकारी हमने आप तक पहुंचाई आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी। दीक्षा है हमारे साथ, दीक्षा शर्मा, आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, साथ ही एडिशनल चार्ज है आपके पास सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली का। आप स्वयं इतनी यंग हैं कि आपको देख के मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो शायद ये सोचेंगे कि अभी तो आप शायद कॉलेज में ही हैं, और लेकिन उसके बावजूद आपने जो जानकारी हमें दी है वो वाकई में बहुत ज्यादा काम की है। दीक्षा, समय बहुत कम बचा है हमारे पास, चलते चलते अगर आप हमारे युवाओं से कुछ कहना चाहें तो।
0: जी बिल्कुल, मैं हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी युवा एवं खेल मंत्रालय से, उनका ये कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा का पंजीकरण कराना है माई भारत पे, ताकि जो एक नेशनल पोर्टल है उसका जो संदेश है वो सभी युवाओं तक पहुँचे। और दूसरा, हमारी नशा

0: युवा फॉर विकसित भारत एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर सभी युवाओं को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आएं और इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की स्कीम्स का लाभ लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि युवाओं आगे बढ़ो और अपनी जो क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको उजागर करो और देश को एक नई दिशा की ओर, विकसित भारत की ओर ले जाइए।
1: क्या बात है दीक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: हमने बात की दीक्षा शर्मा से, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल चार्ज ऑफ सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली। जितनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी है उतनी ही बढ़िया जो है जानकारी इन्होंने आपको दी और उतनी ही ये यंग है और मुझे लगता है कि सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो ये बन सकती है। ये जानकारी उम्मीद करती हूं कि आपके काम जरूर आएगी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि आज के दिन 15 जुलाई के दिन हमने आप तक पहुंचाई है ये जानकारी। बदलते हुए जमाने के साथ उसकी जरूरतें बदली हैं और बदलती हुई जरूरतों ने पैदा किए हैं नए नए अवसर, और केवल नए नए अवसर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी, इन सब चीजों के चलते जो है रोजगार के स्वरूप भी बदले हैं और बदलते हुए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, ये तो हम जानते ही, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं। फिलहाल आज का हमारा ये प्रोग्राम हम कदम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं
1: जी।

0: समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फेरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फेरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे

0: मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
0: ये लो नानी जी भी आ गई।
3: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
3: हाँ वो तो है।
1: नानी हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
3: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
3: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
3: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
3: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ,

0: यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
2: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
4: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब

0: पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें चाराने पैसे देता हूँ। ये लो चाराने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
4: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
4: है,
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
3: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
5: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
5: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
5: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
5: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ
3: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
6: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
7: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
6: क्या सोच रहे हो तुम?
7: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
6: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
7: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
6: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
3: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
7: प्रणाम महात्मन।
8: जीते रहो पुत्र।
7: महात्मन मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
3: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हो। फिर वे नरेंद्र से बोले,
8: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
7: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
8: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ।

0: यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
1: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।

0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
2: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, जोड़ों का दर्द केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी व्यक्ति को थका देता है, तो कैसे इस दिक्कत से आपको निजात मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो विषय हम चुनकर लाए हैं वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी रोबोटिक जोड़ प्रत्यारोपण। इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107। तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और कॉल करें। आपके सवालों का समाधान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करें, उससे पहले ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हमारा जो आज का विषय है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इस विषय पर हम बहुत बेहतर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस समय जो मौसम है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये समस्याएं जो हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं, ये सब चर्चा हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एक गीत और सुन लें।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें।

दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जी हाँ, साथ साथ चलते हुए हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से अपना जीवन जो आप हैं वो सुचारू रूप से चला सकें। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं आज रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत कब और किस स्थिति में पड़ती है?
1: तो मेरे श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी
1: ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल बहुत जिज्ञासा श्रोताओं के मन में होती है कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी क्या है। ऐसा है कि सर्जन बाहर बैठा रहता है और रोबोट अंदर जाके ऑपरेशन कर देता है,
0: जी
1: तो रोबोटिक सर्जरी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपकी बिल्कुल नई जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनमें GPS लगा है या लेन मैनेजमेंट लगा है या लेन पार्किंग लगा है, ऑटोमेटिक पार्किंग लगा है। ये टेक्नोलॉजी है और
0: जी
1: ये टेक्नोलॉजी जो है किसी भी सर्जरी में यूज की जा सकती है, लेकिन इसको हम आजकल सारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में प्रैक्टिकली यूज करने की संभावनाएं बन रही है। पर अभी जो प्रैक्टिकली है, जो नी रिप्लेसमेंट है जिसमें पार्शल और टोटल नी दोनों इंक्लूडेड है, और हिप रिप्लेसमेंट खास करके हिप रिप्लेसमेंट और पार्शल नी रिप्लेसमेंट में इसका बड़ा अच्छा योगदान है क्योंकि इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन रेट काफी और फेलियर रेट काफी कम किया जा सकता है।
0: जी
1: तो किसी भी व्यक्ति जिसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है उसकी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आज की तारीख में रोबोट से भी की जा सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, पारंपरिक जो सर्जरी है उससे ये किस तरह से अलग मानी जा सकती है?
1: वो कई तरह से अलग है, जैसे कि आप अब जैसे GPS यूज करते हैं तो आपको चाहे रास्ता आता है लेकिन आपको गूगल बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है या यहाँ पे कोई कॉशन है, यहाँ पे कोई वार्निंग है। तो जो पहली बात तो ये है कि एक हमारा मानना है आजकल कि हर व्यक्ति अलग होता है,
0: जी
1: तो किसी का घुटना बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी पे कोई एंगल है, किसी पे कोई एंगल है। तो जो एक पर्सनलाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको कहे, जो व्यक्ति विशेष के लिए ही टेलर्ड हो, ऐसी सर्जरी सिर्फ रोबोट से संभव है। जबकि आपकी टांग में जो नेचुरल कर्व है वो हर व्यक्ति में अलग होता है, तो उसकी जो है एनाटॉमी जो हम कंप्यूटर से देख के या रजिस्ट्रेशन करके उसको प्रिसाइजली उनकी जैसी घुटने की बनावट है उस तरह का विशेष तरीके से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट उस अलाइनमेंट में उनका किया जा सकता है।
0: जी
1: दूसरी बात है प्रिसीशन है, तो एक रोबोट जो है वो इतना प्रिसाइज है कि 0.1 मिलीमीटर तक की डेविएशन नहीं देना चाहता। मैं आपको देता जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई एक कंपोनेंट 2 डिग्री में डालना है तो वो पारंपरिक तरीके से संभव नहीं है, लेकिन रोबोट वो कर सकता है। तीसरे जो टिश्यू है उनकी प्रोटेक्शन होती है, अगर रोबोट ने एक लाइन लगा दी तो उसके बाद अगर मैं हाथ में रोबोट को लेके पुश भी करूं तो उस बाउंड्री के बाहर नहीं काटेगा, तो
0: जी
1: टिश्यूज की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होती है। और ये भी होता है कि क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होती है, रिलीफ कम होते हैं, तो इसमें दर्द कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है।
0: जी बहुत सारे फायदे हैं डॉक्टर साहब, आपसे आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक गीत यहाँ सुन लेते हैं, आगे के सवाल इसके बाद।
1: जी।

0: जी हाँ, काली घटाओं की बात तो सुनिए, लेकिन हमारी बात भी ज़रूर सुनिए और गौर भी कीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, जो एक आम समस्या है। हमें ये पता है कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं। सागर साहब का ये मैसेज है विजयपुरा कर्नाटका से। ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं बाद में, क्या उनको जोड़ों की समस्या हो सकती है, या अर्थराइटिस की जिनको समस्या है, क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए काम करता है?
1: जी, तो सागर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं या मैराथन करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जिसमें कंटैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें घुटने में इंजरी होने की संभावना होती है, तो ये ध्यान रहे कि जब चोट लगती है जिस घुटने में, उस घुटने में जो डिजेनरेशन की प्रक्रिया है, जो उसके खराब होने की प्रक्रिया है, उसकी दर थोड़ी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में जॉइंट जल्दी खराब होते हैं। और बिल्कुल, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है, और बल्कि बहुत तरीके से कन्वेंशनल से बेटर है। जैसे कि अगर किसी के हिप जॉइंट बहुत ज्यादा खराब है, टांग छोटी लंबी है, तो उसमें जितना प्रिसीजन से रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट से सर्जरी की जा सकती है वो मुश्किल है। पारंपरिक तरीके से इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो जी, हर तरह की, जैसे मैंने पहले कहा, सर्जरी को रोबोटिक से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जो पारंपरिक रूप से की जा सकती है, लेकिन रोबोट से नहीं की जा सकती है। लेकिन उसकी एक एक्सपेंस है, उसका एक खर्चा है, और उससे जो उसका एक ड्रॉबैक है वो यही है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और लोगों के मन में होता है कि ये सर्जरी कितनी टिकाऊ होगी, क्योंकि लोगों को आमतौर पर आदत हो जाती है पारंपरिक जो चीजें हैं उनको अपनाने की, तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हर किसी के जहन में आता है कि अगर हम आज ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो कितनी देर चलेगा। तो
0: जी
1: मैं आपको इसके दो भाग में इसका उत्तर दूंगा। पहला भाग तो ये है कि जैसे घुटना है उसको हम औसतन कहते हैं कि 20 साल चलता है। तो 20 का मतलब कुछ में 18, कुछ में 22, ये इस तरह से एवरेज या औसतन कह सकते हैं कि घुटने की है। लेकिन जहां तक कूल्हे का सवाल है, जो कि ज्यादातर और युवाओं में बदला जाता है, कम एज में बदला जाता है, क्योंकि उसकी बीमारियां या तो युवावस्था में होती हैं या बिल्कुल बुढ़ापे में जाके होती हैं, जब आपका कूल्हा टूट जाता है। तो आज की डेट में 25 से 30 साल जो है वो कूल्हा आराम से आपको सर्विस देता है। और जो नए वाले डिजाइन है वो बहुत अच्छे हैं, और उनमें आज की डेट में, जैसे हम लोग एक सोसाइटी के मेंबर हैं, मैं इंटरनेशनल हिप सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो उसमें पिछले से पिछले साल जब हम लोग ग्रीस में मिले तो हमने डिसाइड किया कि एक 50 साल के व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि आज अगर आप कूल्हा चेंज करवा रहे हो तो वो आपको सारी जिंदगी चलेगा।
0: जी
1: तो ये एज पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे, यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एवरेज जो हम कह सकते हैं, जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको इतना दिन चलेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है अनमोल गुप्ता जी का, सरिता विहार दिल्ली से। ये लिख रहे हैं कि मैं 45 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, एक्सरसाइज करते हैं ये साइकिल चलाकर, तो ये जो एक्सरसाइज है इनके लिए लाभदायक है क्या, या किसी के लिए
1: जो
0: भी लाभदायक हो सकती है? जी
1: जी, साइकिल का ये रहता है कि जो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, जिसको हम अगर जीरो रेजिस्टेंस पे या फ्री करके चलाएं और सीट को जितना ऊंचा कर सकते हैं उतना करके चलाएं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से उसका मूवमेंट करें, तो जैसे 15 मिनट फॉरवर्ड तो 5 मिनट बैकवर्ड, तो उससे इनकी काफी लाभ होता है। जो दूसरी आउटडोर वाली साइकिल है उसमें क्योंकि हम पुश करते हैं, तो अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है।
0: जी, तो थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी है जो कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से। ये लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट ना हो इसके बचने के लिए कोई उपाय बताएं। दूसरा सवाल इनका ये है कि इनकी सिस्टर को रिप्लेसमेंट बता दिया गया है तो उनको डर लगता है, थोड़ा सा ये जानना चाहती हैं विस्तार से कि कोई समस्या ना हो अगर वो रिप्लेसमेंट कराती हैं तो क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं।
1: तो पहली

0: बात तो ये है कि अगर आप घुटनों के रिप्लेसमेंट से बचना चाहते तो सबसे पहले अपना वजन नियंत्रण में रखें। सबसे बड़ा कारण जो घुटने घिसने का है वो वजन है, और आज की डेट में हमारे पास 35-40 साल के लोग आते हैं जिनके घुटने पूरी तरह से घिस चुके हैं क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है इस तरह की एक्टिविटीज करना जिनसे घुटना डैमेज होता है, अब फ्लैट कल्चर हो गया है, लिफ्ट नहीं है तो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो याद रखें कि सीढ़ी चढ़ते हुए अपने वजन का 10 गुना वजन आपके घुटनों पे पड़ता है। इसी तरह जमीन पे बैठना, अलती पलती मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, बहुत ज्यादा 15 मंजिल से ज्यादा रोज सीढ़ी चढ़ना या 10 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलना, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपका वजन ज्यादा है, वीआरटीएच ज्यादा है, इंजरी है। कुछ लोगों को, लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको थायराइड है तो उसका नियंत्रण होना चाहिए, अगर आपकी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको घुटने घिसने का अंदेशा ज्यादा है, तो इन सब को अपना लाइफ स्टाइल आप चेंज करके, अपना वजन कम करके, अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रख के, उनकी लगातार व्यायाम करके, उनको स्ट्रांग करके रखें और घुटना डैमेज करने वाली एक्टिविटीज को कम रखें तो आप उस घुटने को चला सकती हैं। जहां तक आपकी सिस्टर का सवाल है, देखिए हम घुटना बदलने के लिए तब बोलते हैं जब आपका दर्द इतना ज्यादा है कि आपको लगातार दर्द की दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गई है कि आप मंदिर जाना चाहें, शादी में जाना चाहें या घूमने जाना चाहें तो नहीं जा सकते, तो ऐसे में उस घुटने से बाकी जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताया है तो जाहिर है कि उनके घुटने पूरी तरह घिस चुके होंगे, तो अगर वो उसको जबरदस्ती उसके साथ खींचेंगी तो कई बार वो और भी कॉम्प्लिकेशंस को लीड करता है, तो अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, और अगर आपको कुछ संशय है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कोई भी, मैं भी माइंड नहीं करता कि अगर मेरा पेशेंट मेरी दी हुई एडवाइस को किसी और से पूछना चाहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आपका ये हक है कि आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, अगर आप उसको दूसरे से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है तो उसको बहुत ज्यादा तक आप डाल नहीं पाते हैं, अक्सर लोग उसको पोस्टपोन कर पाते हैं, अवॉइड नहीं कर पाते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब सुनने में ये भी आता है कि अगर ज्यादा डिले किया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जहां सर्जरी कराना भी मुश्किल होता है। जी
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा अक्सर हमारे पास होता है कि लोग इतना डिले कर देते हैं कि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हम ही लोग कहते हैं कि अब आपके लिए सेफ है, नहीं आप मत कराइए। दूसरे हम पेशेंट से एक ही बात पूछते हैं, आप क्या इस घुटने के साथ सारा जीवन निकाल लोगे? लेकिन याद रहे ये वायरल बुखार नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये समय के साथ बढ़ेगा, आप चलना बंद कर दोगे तो ये बैठे बैठे भी दर्द करेगा, अगर आप दर्द की दवा खाओगे तो आपकी किडनी डैमेज होगी, और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करके, चलना फिरना बंद करके, पेन किलर खा के अगर आप अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को छोटा ही कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब जैसा कि इन्होंने लिखा कि इनको डर लग रहा है तो लेकिन ये समस्या ना हो पहले कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है मरीज को जिससे वो दिक्कत में ना आए, तो टेस्ट कौन कौन से पहले होते हैं?
0: जी पहली बात तो यह, अगर मरीज मुझे आके बोलते हैं कि डर लग रहा है तो मैं उनसे कहता हूँ कि लगता है आपकी तकलीफ जो है वो आपके डर से कम है। जिस दिन आपकी तकलीफ आपके डर से ज्यादा हो जाएगी तो आप खुद मान जाएंगे ऑपरेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऑपरेशन सेफ नहीं है तो आपके डॉक्टर ही नहीं करेंगे, ये एक टीम का काम होता है, उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके अंदर फिजिशियन होता है, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपकी शुगर बहुत साल से बहुत खराब है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, तो एक टीम होती है जो पहले ये निर्धारित करती है कि आप ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं, और दूसरी बात इस समय फिट है कि नहीं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम कहते हैं जाइए पहले शुगर कंट्रोल करके आइए, आपका HbA1c जो है वो 7.2 कई जगह 7.5 बट हम 7.2 कहते हैं, इससे कम होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए, ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है। देखिए ये नियम तो सेम है चाहे आप रोबोटिक कराएं, कंप्यूटर से कराएं या पारंपरिक तरीके से कराएं, लेकिन ये एक इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसको प्लानिंग के साथ किया जाता है, इसलिए हम कोई भी एडिशनल रिस्क नहीं लेते हैं और मरीज को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने सारे विशेषज्ञों से ये निर्धारित कराते हैं कि कब उपयुक्त समय रहेगा जब आपकी फिटनेस मैक्सिमम होगी और आपको कोई भी रिस्क होने की संभावना मिनिमम रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब एक

0: भी बात होती है कि हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, हमें उससे पहले फायदे जानने की जरूरत होती है। जैसा कि कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में ब्लड लॉस कम होता है, क्या ये सच्चाई है?
1: जी, कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर से करते हैं या रोबोट से करते हैं तो उस समय पे हम लोग कुछ स्टेप होते हैं, जैसे पारंपरिक में हम लोग फीमर की कैनाल खोलते हैं और उसमें जिग डालते हैं, तो ब्लड लॉस इसमें कम होता है। ब्लड लॉस इसलिए भी कम होता है कि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम करने पड़ते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, ब्लड लॉस कम होता है, दर्द कम होता है और अर्ली रिकवरी फास्ट होती है, जबकि कुछ लिटरेचर ये कहता है कि 6 महीने के बाद उसमें कोई अंतर नहीं होता दोनों कैटेगरीज में, लेकिन अर्ली रिकवरी में डेफिनेटली फास्ट होने का एविडेंस है, पेन कम होने का एविडेंस है, ब्लड लॉस कम होने का एविडेंस है।
0: जी, और डॉक्टर साहब समय कितना लगता है सर्जरी पूरी होने में और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है मरीज को?
1: तो आपका पहला सवाल तो ऐसे है कि जैसे आपने पूछा कि आकाशवाणी भवन से कनॉट प्लेस जाने में कितना समय लगता है, कि आपकी कौन सी गाड़ी है, कैसा ड्राइवर है, कितना ट्रैफिक है बाहर, लेकिन औसतन ये सर्जरी 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाती है। और हॉस्पिटलाइजेशन टिपिकली 5 दिन का होता है, 1 दिन पहले एडमिट किया जाता है, उस सेपरेट टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस देखी जाती है, अगले दिन ऑपरेशन किया जाता है। अधिकतर हम लोग ऑपरेशन वाले दिन ही पेशेंट को बेड से निकाल के खड़ा करते हैं, चेयर में बिठाते हैं और चलाते हैं, और 24 घंटे बाद उनको सीढ़ियां चढ़वाया जाता है, वॉशरूम भेजा जाता है, और 10 से 14 दिन तक वो वॉकर यूज कर सकते हैं और 10 से 14 दिन तक स्टिक। हालांकि कुछ हमारे मोटिवेटेड और युवा जिनको कहें जो सिर्फ 60-65 साल के ही हैं, वो लोग पहले हफ्ते में ही स्टिक के बिना भी चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, रिकवरी एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज चीज है, हर एक व्यक्ति का अपना मेंटल मेकअप होता है, अपना मोटिवेशन होता है, लेकिन अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रेपो है, उनके बीच में समन्वय है, एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, तो रिकवरी में कोई परेशानी नहीं होती है।
0: जी, तो कहने का मतलब श्रोताओं यहाँ पर यह है कि पूरे विश्वास के साथ आप सर्जरी करवा सकते हैं, जरूरत है थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की, जो कि डॉक्टर साहब आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह का ध्यान आपको भी रखना है। सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है, जैसा कि एहतियात डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो जरूर ध्यान में रखिए। साइकिल भी आप एक्सरसाइज के दौरान चला सकते हैं लेकिन उसका भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस तरह से क्या नियम होना चाहिए। डॉक्टर साहब और क्या क्या एहतियात हैं जो गलत फहमी में लोग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अगर कोई समस्या है तो क्या कहना चाहेंगे?
1: तो एक तो स्क्वाटिंग जो है, स्क्वाट्स, जिम वाले स्क्वाट्स बहुत कराते हैं। दूसरे, बहुत लोग मैंने देखा कि काफी एज तक, खास करके जो ज्यादा एज वाले जिनको बचपन से ही इंडियन टॉयलेट या भारतीय शैली के शौचालय को इस्तेमाल करने की आदत है, वो एक चीज है जो घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। अब हमारे यहाँ सब पूजा पाठ जमीन पे बैठ के किया जाता है, आलती पालती मार के किया जाता है, आप जरूर करें, लेकिन अगर आपको घुटनों की तकलीफ शुरू हो गई है तो जमीन पे बैठना और आलती पालती मारना पूर्णतया बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे भी नुकसान होता है। इसी तरह से जो अब सीढ़ियां जहां जरूरी है वहां चढ़े। देखिए, 3 चीजें हैं जिनसे घुटने में नुकसान नहीं होता है। एक होता है सैर करना, वॉकिंग। कई बार हम देखते हैं कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने बोल दिया आप चले ना 15 दिन, तो ऐसा कोई इलाज मुझे मालूम नहीं अपने पूरे करियर में जो ऑर्थोपेडिक्स में, जिसमें पेशेंट को चलने से मना किया जाए। तो पहले तो वो गलत है अगर आपको ये बोला जाए कि आप चलिए मत। दूसरा, तैरना, जो लोग स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं, तैराकी जानते हैं, उनके लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते हैं लेकिन उनको पूल की सुविधा है, उनके स्विमिंग पूल उनकी कॉलोनी में या उनकी सोसाइटी में है, तो शैलो एंड पे कमर तक पानी में चलना उनके लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और तीसरा, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई कि अगर एक्सरसाइज वाली साइकिल को 0 रेजिस्टेंस पे फ्री करके चलाया जाए, जो 15 मिनट सामने की तरफ और 5 मिनट पीछे की तरफ, तो वो भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। चलने से, भगवान ने हमें 2 टांगे दी चलने के लिए, चलने से कभी भी घुटनों में डैमेज नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको घुटनों की तकलीफ बड़ी हो तो आपको चलने में दर्द हो, तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन ये कभी ना सोचे कि चलने से मेरे घुटने डैमेज हो जाएंगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण आपसे जानकारी मिल रही है डॉक्टर साहब। यहाँ पर अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आगे की बातें।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। और आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342101080 और 0112342102। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और लगातार आप कर भी रहे हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070।
2: अनुराधा जी, मैं कुछ कहूँ?
1: जरूर सर।
2: तो जैसे आपने पिछला गाना बहुत खूबसूरत गीत चलाया, हाँ। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। अगर जीवन में कुछ वजह है, जीने की वजह है, तो सबसे पहले अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखें, तो वो आपके और आपकी वजह दोनों के काम आएगी।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है श्रोताओं, और इस बात को गांठ बांध दीजिए, क्योंकि जीवन तभी खूबसूरत होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप स्वस्थ रहें, और उसके लिए लगातार डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
3: जी, उत्तराखंड से बोल रहे हैं।
1: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
3: एक मैडम ऐसा है कि डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: एक कमर में अक्सर दर्द रहता है बहुत, मतलब वेस्ट मतलब कमर में ना
2: जी।

0: वेस्ट बोलते हैं सर ना,
1: जी
0: तो कमर में अक्सर दर्द रहता है। जैसे कभी मैं पैदल चलता हूँ तो जब मैं घर आता हूँ तो ज्यादा दर्द होने लगता है, तो ये जो है आगे जाके कुछ और परेशान करेगा सर? मैं यही पूछना चाहता हूँ।
1: देखिए, ऐसा है कि कोई भी कमर का दर्द, आपको ये मैं बता दूं कि कमर का दर्द दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है, पहली है जुकाम। तो हर जीवित व्यक्ति जीवन में कम से कम एक बार कमर दर्द को जरूर झेलता है। तो कमर दर्द कई तरह के होते हैं, कुछ खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे हम ये पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमर दर्द जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। आपने कुछ भारी वजन उठा लिया या आप ज़्यादा देर कोई कार ड्राइव कर लिया, जैसे मैंने घुटनों के लिए कहा, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसका असर भी आपकी कमर पर होता है। और एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें कि आपका बैलेंस डाइट है, वजन ठीक है, आप व्यायाम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उसमें आपकी कमर भी स्वस्थ रहती है। लेकिन कोई भी दर्द कमर का अगर आपको 5 से 7 दिन से ज्यादा चलता है, सुबह उठ के उसमें आपको कमर में अकड़न लगती है, आपका दर्द टांग में जाता है, आपको कोई पैर में कमजोरी लगती है, कुछ झंझनाहट लगती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके आपको ठीक से एडवाइस कर सके।
2: जी,
0: ठीक है सर।
2: तो यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो गया है डॉक्टर साहब। हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन आप दे रहे हैं। क्या कोई एक ऐसा मौसम भी होता है जिसमें रिप्लेसमेंट आराम से करवाया जा सकता है, या किसी मौसम में भी, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, क्या
1: बहुत
2: सलाह देंगे
1: अच्छा
2: सर?
1: सवाल है। देखिए, मैं इसका जवाब हमेशा, ऐसे सवाल हम रोज सुनते हैं,
2: जी
1: तो मैं ये कहता हूँ, जिस व्यक्ति को डर लगता है और जो कराना नहीं चाहता है, वो गर्मियों में पसीना आता है उसको, सर्दी में उसको ठंड लगती है,
2: जी
1: बरसात में उसको लगता है कि घाव खराब हो जाएगा, इस हिसाब से पूरे साल में उनको कोई अच्छा समय नहीं मिलेगा। हमारे अस्पताल पूरा साल भरे रहते हैं और पूरे साल ऑपरेशन होते हैं, तो मौसम का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, जोड़ों का दर्द जैसे है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अचानक बरसात होती है या ठंड पड़ती है, तो जोड़ों का दर्द जरूर मौसम से प्रभावित होता है और वो दर्द उन दिनों में बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का छोटा उत्तर है कि जी नहीं, ऐसा कोई मौसम नहीं है जो इसके लिए बहुत अच्छा है या इसके लिए बहुत खराब है।
2: जी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब बराबर आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी समस्या है तो आप पूरा समाधान ले सकते हैं डॉक्टरी सलाह से। डॉक्टर साहब, हमारे पास कृष्णा जी का रायपुर से मैसेज आया हुआ है, लिख रही हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार भेजा है इन्होंने, मुझे
1: नमस्कार
2: भी
1: कृष्णा
2: भेजा
1: जी।
2: है। जी, ये लिख रही हैं कि मेरी जिज्ञासा है कि 45+ मेरी बहन के दाहिने एल्बो में एक्सीडेंट के बाद स्टील प्लेट लगा है, क्या उसे लाइफ टाइम रखते हैं तो कुछ हानि तो नहीं होगी? इनका दूसरा सवाल है कि मेरे स्टील के नकली दांत लगे हैं, उसे लेकर भ्रम में लोग डालकर कहते हैं कि ऐसे में EMR या कोई जांच है जिसे नहीं करवाना चाहिए, करंट से जान चली जाती है, क्या ऐसा होता है? थोड़ा मार्गदर्शन
1: पहले
2: करें।
1: तो ये बता दूं कि MRI में करंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है।
2: जी
1: तो उसमें जो अगर कई धातु की चीज़ें होती हैं जिनसे MRI इसके कंपैटिबल नहीं होती हैं। तो दांत के बारे में तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में चोट लगने पर जितनी भी प्लेट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, जितने भी इम्प्लांट ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी बॉडी में डालते हैं, वो सब MRI कंपैटिबल होते हैं, आप निश्चिंत रहें। और अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको MRI वाले पूछते, तो कहना कि डॉक्टर मल्होत्रा ने हमें रेडियो प्रोग्राम पे बताया था, अनुराधा जी भी गवाह थी,
2: जी
1: कि ऐसा में कोई रुकावट नहीं होती है MRI कराने में।
2: जी डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में ये तय किया जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही आखिरी विकल्प है?
1: जी, तो मैंने इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया। अगर आप दर्द के बिना और दर्द की दवाई खाए बिना आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते हैं, आधा घंटा चल नहीं सकते हैं, आधा किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, सप्ताह में एक बार से ज़्यादा आपको दर्द की गोली खानी पड़ती है, दर्द से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, तो आप इन घुटनों या कूल्हा या कंधे, जो भी आपके जोड़ आपको तंग कर रहे हैं, उनसे आपको, खास करके ये घुटने और कूल्हे के लिए, क्योंकि मैंने चलने की बात कही, तो आपका घुटना खराब हो चुका है, कूल्हा खराब हो चुका है, तो मोटे तौर पे 3 चीजें, आप चल फिर कितना सकते हैं, आपको दर्द कितना होता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता पे इसका कितना प्रभाव पड़ा है, उस

0: से आप ही को डिसाइड करना है, आपके डॉक्टर को ये बातें नहीं मालूम है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं बिना पेन किलर खाए और अपना काम काज सुचारू रूप से करके बिना अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब किए, तो मैनेज करिए, लेकिन इन सब के साथ जीना अपने आप को एक प्रताड़ना देने वाली बात है।
1: जी, नी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये भी देखा जाता है कि एक ही घुटने का सर्जरी की जाती है, क्या दोनों घुटने की सर्जरी पॉसिबल है अगर मरीज करवाना चाहे?
0: तो हमने एक आर्टिकल इसमें इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल में पिछले साल छापा था, और हमने ये बताया था कि किन लोगों को दोनों घुटने चेंज किए जा सकते हैं, किन को एक समय पे एक ही करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
1: जी
0: जब आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे विदेश में 75 कहते हैं पर हमारे यहाँ हम 70 कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अमेरिकन के मुकाबले में औसतन स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, अगर किसी को डायबिटीज़ भी है और उसकी एज भी ज़्यादा है, अगर किसी को कोई भी मेजर बॉडी की इलनेस है, या उनके एक ही घुटने में मेनली तकलीफ है, हमारा नियम यह है अगर आपके ज्यादा खराब वाले घुटने में 100 पैसे दर्द है और दूसरे में 60 पैसे से कम है, तो आपको एक ही कराना चाहिए।
1: जी
0: और अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमें दोनों कराने हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके दोनों खराब हैं कि नहीं, और फिर हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और एनेस्थेटिस्ट से बात करते हैं और ये देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको दोनों करना सेफ नहीं है, तो हम नहीं करते हैं, समझा के एक टाइम पे एक ही करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या लागत आती है अगर कोई एक आम इंसान कराना चाहे?
0: तो जोड़ों की कीमत तो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दी है, वो तो कवर्ड है, तो वो तकरीबन 60,000 में नी रिप्लेसमेंट आता है और करीब 1.5 लाख में कूल्हे का जो बेसिक, एक 35 से 1.5 लाख तक में कूल्हा आ जाता है। और बाकी आप जिस अस्पताल में करा रहे हैं उनका पैकेज होता है जो कि इम्प्लांट के अलावा कहीं भी मतलब 1.5 से लेके 2.5-3 लाख तक पैकेज होता है उसका।
1: जी, रोबोटिक जॉइंट प्लेसमेंट के बाद किस तरह की सावधानी की जरूरत होती है?
0: तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ एक तरीका है। तो मैं पेशेंट से ये कहता हूँ, जब वो पूछते हैं कि हम रोबोटिक कराएं कि नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, गाड़ी आपकी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आप मुझे मर्सिडीज देंगे तो मैं मर्सिडीज में ले जाऊंगा, आप मुझे होंडा देंगे तो होंडा में ले जाऊंगा, या आप मुझे मारुति देंगे तो मारुति में ले जाऊंगा। मेरा काम है आपको सेफली पहुंचाना, चाहे आप मुझसे पारंपरिक तरीके से कराएं या रोबोटिक से कराएं। उसी तरह से जब एक बार सर्जरी हो गई, तो रोबोटिक और नॉन रोबोटिक में कोई पोस्ट ऑपरेटिव में, रिहैबिलिटेशन में, एक्सरसाइज में कोई अंतर नहीं है।
1: जी, तो श्रोताओं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। यदि आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें कॉल करें, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और आप अपने सवाल हमसे तुरंत कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342108 0112342108 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे की बात।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है मेरे मन में कि कौन सी स्थितियां होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं जिनके दौरान रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले किया जाता है?
1: जी, चाहे रोबोटिक हो या पारंपरिक हो, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट उस समय पे नहीं करना चाहिए जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन का फोकस हो। खास करके हम डायबिटिक्स में देखते हैं और लेडीज में कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। तो अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसका पूरी तरह से उसको क्योर करके ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। और ये भी बात याद रखें कि भले ही चाहे वो कोई आर्टिफिशियल जॉइंट, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, या कोई स्टेंट हो, हार्ट वॉल्व हो, कोई भी अगर आर्टिफिशियल चीज आपकी बॉडी में है, तो कोई भी इन्फेक्शन होने पे तुरंत उस इन्फेक्शन का इलाज होना चाहिए ताकि वो जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट आपकी बॉडी में है उसमें वो इन्फेक्शन नहीं पहुंच जाए। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। शंट में, न्यूरोलॉजी के शंट होते हैं, वॉल्व होते हैं, उन सब में खास करके ध्यान रखना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: तो सर दो तीन क्वेरीज है। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो ड्राइव करने का टेल बोन में बड़ा पेन फील करता हूँ। दूसरा, मैंने ये सुना है जैसे ज्यादा चलने से कि हमारे घुटने में कार्टिलेज, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, वो क्या कम हो जाती है ऐसे कुछ?
1: जी, बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ठंड में जो हमारे अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हल्का सा जम जाता है, प्लस मांसपेशियां भी ठंड में कुछ अकड़ जाती है। तो सर्दियों में, कुछ देर पहले भी मैंने बताया कि जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, हमारी नर्व भी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब हमें कोई चोट लगती है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादा दर्द करती है, क्योंकि जब हमें चोट लगती है और जो केमिकल निकलते हैं जो दर्द करते हैं, वो गर्मियों में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है स्किन में, तो उसको बहा के ले जाती है तो दर्द कम होता है। सर्दी में हम हीट कंजर्व करते हैं तो स्किन में कम हीट पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है, तो वो केमिकल ज्यादा देर तक दर्द करते हैं। और जब हम प्रिकॉशंस बताते हैं घुटने के लिए, तो हम ये बताते हैं, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूं। घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, जब पानी एक जगह खड़ा हो जाता है तो बदबू मारता है। उसी तरह अगर आप बहुत घंटों तक अपने घुटने को नहीं हिलाएंगे तो वही हालत होगी जैसे कि पानी रुकने से होती है, क्योंकि तब केमिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपको उठ के 4-5 कदम चलना पड़ता है, अपने आप को, टांग को हिलाना पड़ता है, और वो फ्लूइड जब सर्कुलेट हो जाता है उसमें वो केमिकल्स की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। तो चलते रहे, चलाते रहे, जोड़ आपके चलायमान रहेंगे तो दर्द नहीं करेंगे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने बहुत गौर से सुना होगा और उसे इस तरह से अपनाएंगे कि उनके जीवन की दिक्कतें जो हैं जोड़ों से, दर्द से जुड़ी हुई, वो तमाम समस्याएं खत्म हो जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत
1: धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, ट्रामा फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रामा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आपने सुनकर पूरी तरह से लाभ लिया होगा। आपको बता दें कि अगर आप अपना फीडबैक हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi। अपना सुझाव, प्रतिक्रिया हमें इस पर भेज सकते हैं healthairdelhi@gmail.com। तो

0: दे रही है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लागू व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पर कहा, भारत ब्रिटेन की साझेदारी में ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनः निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा मानकों को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथयात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम में सामान्य बदलाव का अनुमान है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा

0: देखते देखते कैसे एक पल में बदल जाती है जिंदगी, उसका एहसास सिर्फ और सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसके साथ वो हादसा हुआ है और उस हादसे की वजह से बदल गई है उसकी जिंदगी।
1: मेरा नाम बबीता है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने साथ कुछ ऐसी हादसा हुई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बचपन में मेरी मम्मी पापा गुजर चुके थे और मैं अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। कुछ टाइम बाद मैं अपनी चाचा के साथ दिल्ली आ चुकी थी रहने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी चाचा जो है उनकी अनवांटेड लेडीज के साथ काफ़ी संबंध है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उससे बहुत छोटी थी, ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे एक लेडी आना जाना शुरू किया और उनके साथ मेरी चाचा जी की काफ़ी अच्छी रिलेशन भी था उनके साथ। तो उन्होंने फिर मेरा एज को देखते हुए मेरे चाचा जी को उन्होंने कन्विंस किया है कि जो बिजनेस मेरे चाचा जी करते हैं उनके साथ मुझे भी दखल दिया जाए। शुरू शुरू में मेरे चाचा बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो भी उस लेडीज़ के दबाव में आ जाते। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे चाचा एक क्लाइंट को घर लेके आते हैं अपना एक फ्रेंड बोल के, और फिर उनसे बातचीत करते हैं। उस दिन मैं अकेली घर पर थी। फिर मेरे चाचा किसी दुकान पर चले जाते हैं कोई सामान लेने के बहाने से, और उस दौरान वो इंसान मुझ पर हमला कर देता है। मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं किचन से एक नाइफ ले लिया था, कोई मेरे पे अगर हमला करे उससे पहले मैं हमला कर दूं, क्योंकि मैं सहमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। तो जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया तो मैंने उनको डराने की कोशिश करी सबसे पहले, और वो डर भी गया। और फिर तुरंत वो घर से बाहर जाके मेरे चाचा जी को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैंने उन पर हमला कर दिया। फिर मेरे चाचा जी घर आए थोड़ी देर बाद, उसके बाद मेरे चाचा जी ने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की, मेरे पे हाथ उठाया और मुझे बहुत बुरा भला मुझे उन्होंने सुनाया। लेकिन ना जाने क्यों उस समय मैं अपनी कंट्रोल में नहीं थी और मेरे से अनजाने में एक हादसा हो गया। जो नाइफ लेके मैं उस आदमी को डरा रही थी, उस नाइफ से मेरे चाचा जी का खून हो गया मेरे हाथ से। और उस हादसा होने के बाद मैं तिहाड़ जेल चली गई। मेरे लाइफ की 9 साल तिहाड़ जेल में कैद हो गई, लेकिन आज मैं बाहर हूँ, एक आज़ाद पंछी की दुनिया में मैं जी रही हूँ। मेरी खुद की एक पार्लर है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ और अच्छे से जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। और मैं सभी लड़कियों से संदेश देना चाहती हूँ, दुनिया में अगर आपको किसी पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप पे करिए। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होते, पहले उनसे पहले भरोसा जीतिए, उनके साथ टच में रहिए।

जी हाँ, बबीता जैसी कई लड़कियां आज हमारे समाज में पाई जाती हैं, जो अनजाने में ही कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे उनकी जिंदगी का पन्ना ही पलट जाता है। दोस्तों, जेल में बिताए गए एक एक पल नासूर की तरह चुभते हुए पूरी जिंदगी भर सताते रहते हैं।

0: जी हाँ, यादों की चादर ओढ़कर जब इंसान अपने गुजरे हुए लम्हों को देखता है तो न सिर्फ उसकी आंखें हो जाती हैं नम, बल्कि निराशा के गहरे बादल भी उसकी आंखों के सामने से होने लगते हैं ओझल। और दोस्तों, इसी कश्मकश और तनाव में जिंदगी का बदलने लगता है रुख। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है बता रही हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ।
1: मैं ये कहना चाहती हूँ आज की पीढ़ी को कि हर एक जमाने में हर एक पीढ़ी को अलग अलग तरीके के तनाव और दबाव आते हैं। ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल है क्योंकि हम उत्तेजित होते हैं अपने जीवन को शुरू करने के लिए, और जब जीवन की राह हमारे अनुसार नहीं चलती है, हमारे सपने हमें पूरे होते नहीं नजर आते हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हमको लगता है जिस तरीके से हम चाहते हैं गाड़ी चले वैसे क्यों नहीं चल रही है। तो ये बड़ा नॉर्मल है और हर पीढ़ी को होता है। ये डिप्रेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्या होगा हमारी जिंदगी के साथ, और उसके अंदर ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको शांत रहना बहुत जरूरी है। हमको ये याद रखना जरूरी है कि हर पीढ़ी को ये परेशानी होती है और हर वर्ग के लोगों को मानसिक तनाव होता है, होता था, होता है, होता रहेगा। लेकिन उसका सामना कैसे करना है ये हमें सीखना है। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठ के चिड़ियों को देखते हैं, बस उड़ती हैं और कहाँ कहाँ से वो अपना पेट भरती हैं, भोजन उन्हें मिल जाता है, तो सुबह के समय पर हमको ईश्वर को जरूर मनन करना चाहिए और अपनी जो भी परेशानियां हैं ईश्वर से कहनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश माना जाता है कि हम लोग बहुत धर्मी लोग हैं, हम लोग परमेश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जो अगर युवा पीढ़ी है उसको लगता है कि मेरा जीवन तो सत्यानाश है, कोई फायदा ही नहीं है मेरे जीने का, तो वो क्या कर रही है, वो युवा पीढ़ी नकार रही है परमेश्वर की उपस्थिति को, और वो उन्हें नहीं करना है। उनको परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को आगे चलाना है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी और गुस्सा आना ये नॉर्मल बात है, सबको होता है। तीसरी बात है कि सहायता का कोई ना कोई जरिया निकल आता है, कोई ना कोई उपाय हो जाता है। और जिस तरीके से जब हम छोटे होते हैं तो हम कोई टेंशन नहीं लेते ना, हमें पता है कि हमारे माता पिता बैठे हैं हमारी टेंशन लेने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमें याद रखना है कि परमेश्वर है, कोई ना कोई मदद करने को आ जाता है, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाता है, कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है और जिंदगी आगे चलती रहती है। अपने हाथ में जिंदगी को लेना और मौत का निर्णय ले लेना ये बहुत गलत बात है।

है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये निर्णय लेने की सोची, अपने जीवन का अंत करने की सोची, लेकिन किसी ने उनकी सहायता करी, शायद किसी की किसी ने उनको सलाह दी, शायद उन्होंने रेडियो पे हमारा कार्यक्रम सुना, तो उन्होंने अपना जीवन खत्म करने की जो विचार था, जो आइडिया था, वो छोड़ दिया। और फिर आगे उनके साथ वो जब वो चले जीवन में, तो रास्ते खुले, है ना। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, अपने आप पर, और रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। तो दुखी मत होइए, हताश मत होइए, क्रोधित मत होइए। बुरा समय सब पर आता है, हर जमाने में बुरा समय आता है, हर पीढ़ी तरह तरह से उसका सामना करती है, लेकिन जिंदगी क्या है, जिंदगी चलती रहती है। तभी तो वो हम गाना गाते हैं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।

जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जीवन चलने का नाम है, लेकिन इसी चलते हुए जीवन में अगर माता पिता का साथ बच्चों को मिल जाए तो मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है।

0: जी हाँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाएं, माँ की गोद में न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि जीने का हौसला भी। इसीलिए आप जब भी निराश हो, परेशान हो, तो अपनी माँ से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा है तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं या दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7678438471 पर, जी हाँ, नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7678438471 पर मैसेज या फोन जरूर करें। आप अपनी बात को वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है आपके कॉलेज की जिंदगी के साथ। और नाम है इसका क्या, इसका नाम है जी अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जिसमें आपको हम लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत सी जानकारी, वहां के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन और वहां के बहुत से लोगों को हम समेट कर लाते हैं आपके लिए हर बार। नहीं, सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकती हूं क्योंकि मेरे साथ होती हैं मेरी फेलो आरजेज और आज एक बार फिर से मेरी सहयोगी माला नेगी जो है वो हमारे लिए लेकर आई हैं बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज एडमिशन जो है ना वो काफी एक बड़ा ही कॉम्पिटिटिव जो है वो प्रोसेस है, और खासतौर पे जब नंबर ऑफ सीट्स जो है ना उनकी संख्या के मुकाबले जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा हो तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ता ही है। बहुत सारी चीजें और भी है ध्यान रखने की, केवल कंपटीशन में सक्सेसफुल होने से नहीं होता है, प्रोसेस को भी तो सही तरह से फॉलो करना चाहिए ना। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बारीकियां जो है ना यही वक्त है कि जब हम ये सीखना शुरू करते हैं, जब ये ट्रांजिशन होता है ना स्कूल से कॉलेज का, तो बस यहीं से हो जाती है शुरुआत इस बात को समझने की कि किस तरह से छोटी छोटी टेक्निकलिटीज और छोटी छोटी जो बातें होती हैं, डिटेल्स होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके सफल या असफल होने में। अब यहां पर एडमिशन का जो मिशन है ना, तो इस मिशन एडमिशन को किस तरह से जीतना है और किस तरह से भाई आपने अपने पसंद के कॉलेज में जाके अपना झंडा गाड़ना है, इन सबसे जुड़ी बहुत सी जानकारी, यानी कि एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी बहुत सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में अल्फाजन में। पिछले हफ्ते भी हमने आपको एडमिशन से जुड़ी बहुत सी जानकारी दी थी, एक बार फिर से मेरी फेलो आरजे माला लेकर आई हैं आपके लिए एडमिशन से ही जुड़े और बहुत सारी काम की बातें। आप जरूर सुनिए हमारा आज का ये प्रोग्राम, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। और आइए जानते हैं पहली जानकारी माला ने किससे ली।
2: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में, और कॉलेज में जब एडमिशन्स की बात होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम अभी तक दे चुके हैं और कई और सवालों के जवाब देने बाकी हैं। स्टेप 3 में जब आपकी लिस्ट पहुंचेगी कॉलेज के पास तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, लेकिन वेरीफाई करते हुए अगर कॉलेज आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर श्योर नहीं है और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात करता है तो आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब लेंगे हम रामजस कॉलेज के एडमिशन सेल के कन्वीनर डॉक्टर अनुज कुशवाहा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: कॉलेज से अगर उसके हेल्प डेस्क से वहां से अगर उसका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है?
3: एक्चुअली में हेल्प डेस्क है हमारे कॉलेज के लेवल पे, ग्रीवेंस कमेटी भी है और ग्रीवेंस कमेटी के फर्दर सब कमिटीज भी हैं जिसमें वो कैटेगरी वाइज हमने उसको डिफरेंशिएट भी किया हुआ है। तो अगर उन्हें कोई कैटेगरी रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई PWD का ही कैंडिडेट है, अगर उसको कोई इशू हो रहा है वहाँ पे, उसका सर्टिफिकेट के बेसिस पर उसका केस रिजेक्ट हो गया, तो वो वहाँ पे अपनी वो ग्रीवेंस रेज कर सकता है। तो कॉलेज लेवल पे भी है एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। द कैंडिडेट कैन ऑल्सो गो एंड रेज द ग्रीवेंस एट द यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल, एंड देन वो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक उसमें आंसर भी मांगा जाता है दैट कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड टू इट, एंड देन अकॉर्डिंगली इन केस द कॉलेज आई मीन द यूनिवर्सिटी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड feels that the admission should be granted to the candidate, the admission उसको मिल जाएगा उसको।
2: और अगर university की जो grievance committee है अगर वहाँ पर student को apply करना है तो online कोई email ID होता है?
3: email ID वहाँ available होगा website पे।
2: ओके, तो ईमेल पर संपर्क करें, और अगर कोई मिलना चाहे पर्सनली तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं?
3: नहीं मैम, वो आउटराइटली यूनिवर्सिटी ने मना कर रखा है चीज के लिए कि सारा, क्योंकि सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन है
2: जी।
3: तो फिजिकल मोड में हम ना तो यूनिवर्सिटी के कोई मिलेंगे और ना ही कॉलेज के।
2: ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी ने सब तरफ अपना परचम लहरा दिया है, तो ऑनलाइन अगर एडमिशन प्रोसेस है और वहां पर अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको कहीं कंप्लेंट करनी है या आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो वो भी ऑनलाइन मोड पे होगी। थैंक यू सो मच सर इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
1: जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अगर मंजिल पानी

है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी नेविगेशनल स्किल्स जो है ना वो कमाल की हों। और वो स्किल्स आपको कौन देता है? वो स्किल्स आपको देते हैं वो सभी जानकारी के स्रोत जो आप तक लेकर आते हैं आपके काम की इन्फॉर्मेशन, और उसमें से मैं हमारे इस प्रोग्राम को भी गिनती हूँ। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में एडमिशन से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ, और मेरे साथ है मेरी फेलो आरजे, मेरी सहयोगी माला नेगी, जिन्होंने इकट्ठा की है एडमिशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए। इनफैक्ट ये इतनी सारी जानकारी

0: उन्होंने इकट्ठा की है कि हम आपको हफ्ता दर हफ्ता जो है ना ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। एडमिशंस जो है वो एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी उस जिंदगी की शुरुआत में, जो आपको आगे एक अडल्ट वर्ल्ड के लिए, एक दुनियादारी के लिए, एक जिसको हम कहते हैं ना आपके करियर से रिलेटेड जो होता है, आपकी जिंदगी से जुड़ा जो होता है, उस दुनिया के लिए जो आपको तैयार करती है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ के अपने मजे भी हैं जो हम सभी लेना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली एक ऐसा वक्त होता है ज़िंदगी का जिसका हम करते हैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार, और अक्सर गुजर जाने के बावजूद वो ना हमेशा आपके साथ रह जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसके एडमिशन से जुड़ी जितनी भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ हम आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस बहुत सारी एक्सटेंसिव जानकारी को प्राप्त करने के लिए माला ने की बहुत सारे लोगों से बातचीत, ताकि कोई भी पहलू जो है ना वो अनछुआ ना रह जाए और सारी की सारी जानकारी वो आप तक पहुंच जा सके। अगली बातचीत किससे की, आइए जानते हैं।
1: हमारे साथ हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर नमन जैन सर, जो कि यहाँ की कॉलेज एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं। और आज हम सर से बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपको सुनकर लगेगा कि ये तो मेरा भी सवाल है।
2: कई बार ऐसा भी होता है कि अब बच्चा है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, बच्चा भी बच्चा है जी, तो कई बार उस बचपने में बच्चे कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। अब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जो है वो कहीं से नकली बना के डाल दिया जी, अब CUET में तो हमें किसी भी तरह से निकल कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ तो करेंगे, कुछ तो तिकड़म लगाएंगे। कुछ तिकड़म लगा के अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो क्या पकड़ कुछ ऐसी है कि फंस भी सकते हैं?
3: जी बिल्कुल होगा, ऐसे कॉलेज लेवल का यही रोल है, या जैसे भगत सिंह कॉलेज या कोई भी बाकी कॉलेजेस का यही रोल है कि जब वो एडमिशन देंगे उससे पहले उस बच्चे के वो सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, जिस एजेंसी ने, जिस पर्टिकुलर स्टेट ने उनको इशू किया है उसके पास एक हर सर्टिफिकेट का एक यूनिक नंबर होता है, हम उससे मैच कर लेते हैं। लार्जली अब हर स्टेट्स के साथ वो मैच हो जाता है। इन केस कोई पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है, वो हम मैच नहीं कर पाए, तो हम वो बाद में वेरीफाई करेंगे।
2: अच्छा,
3: आपके उन डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद भी अगर बच जाता है तो हर कॉलेज में एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होती है। एडमिशन होने के बावजूद बाद एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होगी, वो एडमिशन के जो जितने भी एडमिशन मिले हैं उनको ऑडिट करेगी। तो ना के बराबर चांसेस है, मैं आपको यही कहूंगा, बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा जितना मेरा अनुभव है 0% चांसेस है कि आप फेक सर्टिफिकेट देके एडमिशन ले लें। आपको लेना भी नहीं चाहिए और ले भी नहीं पाएंगे। है ना? और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है किसी कारणवश ह्यूमन एरर, जब भी पकड़े जाएंगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साल हो गया है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे।
2: अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है लेकिन आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मैं इंतज़ार करूंगा, सेकंड लिस्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो ये जो इंतज़ार वाला प्रोसेस है इसको कितने इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, जो आ गया ले लो फटाफट?
3: मैम, आप फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है आप उसको ले सकते हैं। सेकंड लिस्ट में अगर आपको प्रेफरेंस का रीऑर्डरिंग का भी चांस मिलेगा कि आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, और आपको उससे कुछ बेहतर कॉलेज मिलता है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है मैं ये सुझाव दूंगा कि आपको ले लेना चाहिए। है ना? क्योंकि बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट में आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो उसके बाद कोई लिस्ट आएगी उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जब तक की पॉसिबिलिटी होगी आप उसमें अपग्रेड कर ले। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है पहली लिस्ट में तो आपके पास कोई चांस है ही नहीं, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा।
2: इसमें फी का कैसे मैनेज करते हैं?
3: मैम, फी का ऐसे है कि क्योंकि फी कॉलेज को नहीं मिलती है इनिशियली, वो सबसे एंड में मिलेगी, तो बाई चांस आपका लिस्ट ए में, कॉलेज ए में एडमिशन हो गया था और लिस्ट टू में आपका बी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो आपकी जो फी है वो अगर ए और बी कॉलेज की फीस आमतौर पर अलग अलग होगी, सब कॉलेजेस की फीस सेम नहीं है, तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर बी कॉलेज की फीस ज्यादा है तो। अगर बी कॉलेज की फीस कम है तो आपकी जो फी डिफरेंस अमाउंट है वो आपके उसी अकाउंट में रिफंड आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट की थी। इस बात का ध्यान देना होगा आपको कि जब आप जिस अकाउंट से आप फी पे कर रहे हैं उस अकाउंट में फी दोबारा आ सकती है, आपका रिफंड आ सकता है। तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चे रिमोट एरियाज में कैफे वालों से फीस भरवा देते हैं, तो जो रिफंड आएगा वो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।

0: जब आप फॉर्म भर रहे हैं, एक और सुझाव है कि कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी कैफ़े के माध्यम से, अगर आपके पास नहीं है, साइबर कैफ़े होते हैं, इनके माध्यम से आप भर लीजिए, है ना, ताकि उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी
0: थैंक यू,
1: महत्वपूर्ण
0: थैंक
1: जानकारी
0: यू,
1: देने
0: थैंक
1: के
0: यू।
1: लिए।
2: जी, तो कौन सा चांस है जो आपने लेना है और कौन सा चांस है जो नहीं लेना है, कौन सी तिकड़म लगानी है और किसको बिल्कुल साइड में रख देना है, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब एडमिशन्स की बात आती है तो यहाँ पर आप सेकंड चांसेस नहीं ले सकते हैं ना। तो सही करना है और सही तरीके से करना है। तरीका सही होता है, वैसे कहते हैं ना, मीन्स डिफाइन द एंड्स। तो अगर आपके मीन्स सही होंगे तो आपका एंड भी जो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचेगा, आपकी मंजिल जो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि सही रास्ते पर सही तरह से चलकर ही मंजिल को पाया जा सकता है। लेकिन इस रास्ते में आने वाले कौन कौन से पड़ाव हैं और इस रास्ते में आने वाले कौन कौन से स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, और यही काम कर रहे हैं हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। नाम है इसका अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। मिशन एडमिशन के ऊपर हो रही है बातचीत पिछले दो हफ्तों से और आज भी हम कर रहे हैं यही। वैसे जब पढ़ाई की बात आती है या करियर बनाने की बात आती है तो भाई एक तो होती है आपके ट्रेडिशनल एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत बेतरह महसूस की जाती है और वो है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपोजर। वो कौन सा कॉलेज है जिसने इन दोनों चीज़ों के बीच का ये जो फासला है ना उसको तय करने में आपकी मदद की है? जी, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की बात कर रही हूं मैं, जहां पर आपके स्टैंडर्ड ऑनर्स कोर्सेज के साथ साथ हाईली स्पेशलाइज्ड वोकेशनल स्ट्रीम्स जो है ना उनका भी वो वाले कोर्सेज भी जो है ना वो आपको यहां पर मिलते हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने वहां पे की बातचीत और वहां के एडमिशंस के बारे में एंड ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के बारे में जनरल

0: फॉर्म्स हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो नए बच्चे सीयूईटी के जरिए अब अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस देंगे, उनको कौन से कोर्सेज आउटडेट होके जा चुके हैं सीबीएस में और कौन से आ गए हैं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक
1: ये
0: पहुंचेगी
1: जो
0: कैसे होगा?
1: नई कोर्सेज शुरू, बच्चा जब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, एक समर्थ पोर्टल है, उस पोर्टल पे ही उसका एडमिशन होता है। तो
0: जी
1: वहां जाके उसको सब्जेक्ट चूज करना होता है, कॉलेज चूज करना होता है।
0: जी
1: हमारे सारे कोर्सेज वहां पे अपडेट हो गए हैं
0: ओके
1: और जो पुराने से हट गए हैं, तो बच्चे को चीज नहीं है वो अवेलेबल है, वो दिखेगी नहीं वहां पर। तो
0: जी
1: अब बच्चे ने अभी तक उसमें, क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट अभी आया है,
0: जी
1: तो बच्चे को वहां दिखेगा ही नहीं वो, तो जो अवेलेबल है खाली वही दिखेगा, वो
0: ओके
1: इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी उसको सारी की सारी।
0: बहुत बेहतरीन सर। स्टूडेंट सबसे पहले ये सोचता है कि कॉलेज में रहते रहते उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं, तो अगर हम सीवीएस कॉलेज के बारे में बात करें, सीवीएस कॉलेज के लिए तो है ही कि वो तो बच्चे तैयारी उस हिसाब से करते हैं कि उनको इंडस्ट्री में आगे जाके कहीं कोई परेशानी ही ना हो, लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं तब तक वो किस तरह से ट्रेंड हो, किस तरह से उनकी लर्निंग और बेटर हो, इसके लिए कॉलेज ने क्या स्पेशल कुछ किया
1: इसमें
0: है?
1: देखिए, मेरा एक इंस्टीट्यूट को हेड करने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले, या तो वो हायर एजुकेशन में जाए या उसको जॉब मिले, इस लायक बन जाए कि अच्छी नौकरी उसको मिले। तो
0: जी
1: आजकल ज़माना बड़ा फास्ट मूव कर रहा है, दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, चैट जीपीटी आ गई और कई सारे और ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चा है उसको कुछ एक्स्ट्रा करे वो, क्योंकि खाली डिग्री से आज की जो दिन में उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो हमने अपने हर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप हर डिपार्टमेंट एक या दो या तीन एड ऑन कोर्सेज बनाएं।
0: जी
1: एड ऑन कोर्स का मतलब है हमारा ऐसा कोर्स डेवलप करें हम जो हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट
1: फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे से कोई
0: ओके
1: पैसा नहीं लेंगे, टीचर को कोई पैसा एक्स्ट्रा देंगे नहीं।
0: अच्छा
1: तो सैटरडे संडे को
0: ओके
1: और यहाँ शाम के टाइम ऑनलाइन मोड में उसको हम पढ़ाते हैं बच्चों को,
0: ओके
1: वो 40-45 घंटे का मॉड्यूल होता है वो, और
0: ओके
1: एक सेमेस्टर में हम लेके जाते हैं। तो पिछले सेमेस्टर में, उससे पिछले सेमेस्टर में भी हमारे बच्चों ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के कोर्सेज किए, ऐसे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर कोर्स करा, अब स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे है। तो हम चाहते हैं वो कोर्सेज ऐसे बने और ऐसे हमने बनाए हैं जिनमें बच्चे की स्किल डेवलप हो।
0: तो इसका सर्टिफिकेशन कौन करता
1: हम
0: है?
1: कॉलेज देगा,
0: कॉलेज को
1: और
0: देता
1: कॉलेज
0: है
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो
0: ओके
1: कॉलेज का सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। बच्चे ने कोई फीस नहीं दी
0: जी
1: और वो उसका एक रिज्यूमे को एनहेंस करता है वो चीज़।
0: जी
1: और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी कई सारे कोर्सेज इस तरह के बनाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आजकल जैसे कंप्यूटर में मशीन लर्निंग की बात होती है, डाटा एनालिसिस की बात होती है,
0: जी
1: साइबर सिक्योरिटी की बात होती है,
0: जी
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इस तरह के 2-3 कोर्सेज वहाँ भी बने हैं। एक हमने रन किया था और अभी हम चलाएंगे। आजकल क्वांटम की बात हो रही है,
0: जी
1: AI से आगे की चीज़ है वो, उस पर भी हमने एक कोर्स बनाया। अगले सेमेस्टर में हमारे जो BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक हमने और भी काम किया, जो हमारे बच्चे यहाँ पर BSc करते हैं, पहले तो 3 साल की थी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, अब 4 साल की हो गई है। जो बच्चे BTech करते हैं वो IIT में जाके MTech कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: हमारे बच्चे खाली 3 साल की डिग्री के कारण उसको नहीं कर पाते थे, क्योंकि तो उनके लिए 4 साल की रिक्वायरमेंट है। अब हमारी डिग्री भी 4 साल की हो गई है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: मैंने यहाँ पे गेट्स प्रिपरेशन सेल बनाया।
0: अच्छा
1: हमारे टीचर्स हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं उसमें, ताकि हमारे बच्चे भी गेट क्वालिफाई करके MTech में एडमिशन लें।
0: वाह दैट्स सो लवली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, स्टाफ अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी चीज़ों का बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलना बनता ही है और मिलना ही चाहिए। ऐसी काफ़ी सारी कोशिशें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर
1: थैंक
0: करने
1: यू,
0: के
1: थैंक
0: लिए।
1: यू।
2: कहीं जाइए नहीं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन आगे और भी है बहुत सारी जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, मेरे यानी स्वाति के साथ। हमारे साथ है मेरी फेलो RJ माला नेगी, और माला नेगी ने की है बहुत सारी जानकारी इकट्ठा आप सभी के लिए। बदलते हुए जमाने के साथ साथ जिस तरह से अकेडमिक्स का स्वरूप बदला है, उसी तरह से कॉलेजेस ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है, और बहुत सारे नए कोर्सेज जो है ना उन्होंने आपके लिए खोले हैं, क्योंकि बदलते हुए वक्त के साथ बहुत सारे करियर्स जो हैं वो फेज आउट हो जाते हैं और बहुत सारे नए जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। और जब इतनी सारी ऑप्शंस जो है ना लगातार आपके सामने आती रहे लगातार, तो ऑब्वियसली उन्हें चुनने का तरीका भी जो है ना वो और ज्यादा स्पेशलाइज हो ही जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है सही जानकारी का होना, और जानकारी पहुंचाना आप तक है हमारा काम, जो हम करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं हमारा वो प्रोग्राम जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है खास तौर पे, और वो स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशन कर रहे हैं स्कूल से कॉलेज लाइफ में, उन सभी के लिए हम लेकर आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना वो फेमस है अपनी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ के लिए, अपनी सोसाइटीज़ के लिए, अपने फेस्ट्स के लिए, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो है ना आपको मिलती हैं कुछ साल के लिए और फिर रह जाती हैं जिंदगी भर। एंड ऑब्वियसली यादें और दोस्त उसमें से सिर्फ एक या दो चीजें ही हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी बातें जो आप यहां पर सीखते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आप यहां पर करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअली में ना बाद में जाके जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं तो ये सारे लेसन्स, ये सारे लोग, ये सारी बातें जो है ना वो आपके बहुत काम आते हैं, और ये सारे एक्सपीरियंसेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ। लेकिन इस बहुत ही वाइब्रेंट सी जो कैंपस लाइफ है उसमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और भाई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत को तो मैं कहती हूँ कि आप जितना भी कहें ना कि ज़रूरी है जानना, उतना कम है, लेकिन उसके बावजूद आप तक पहुंचाना जानकारी वो हमारा काम है, और जितनी हो सकती है उतनी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, और जैसा मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। माला जो है मेरी फेलो आरजे, उन्होंने की और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी, और वो सारी जानकारी जो आपके काम की है वो आप तक पहुंचाने के लिए कर रही हैं बहुत ज़्यादा मेहनत। आइए जानते हैं अगली बातचीत उन्होंने किन से की।
1: तो अभी मैं हूँ CVS कॉलेज में और हमारे साथ हैं CVS कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज प्रोफेसर नीलमणि प्रसाद सिंह। सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे सर, अभी क्योंकि CUET का रिजल्ट आ गया है, स्टूडेंट्स हर एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, और बहुत जगह पर कन्फ्यूज होकर गलतियाँ भी कर बैठते हैं, तो जनरली किस तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को और उसके सॉल्यूशन क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: शुरुआत हम करते हैं कि जो एडमिशन्स में कैटेगरी वाइज जो एडमिशन्स होते हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है बच्चों के बीच में।
1: जी,
2: OBC कैटेगरी जो है उसमें जो वो सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, दो तरीके का सर्टिफिकेट होता है उनका, एक NCL होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और एक उनके जो रीजनल और स्टेट के गवर्नमेंट है वो इशू करती है।
1: जी,
2: कोई जो सर्टिफिकेट है NCL वो तो वैलिड है, बट यदि स्टेट का इशूड है तो वो आपका 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2026 से अब तक का होगा तभी वो वैलिड होगा, यदि इससे पूर्व का है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो एक तो वहां पे आपको ये क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। सेकंड जो बच्चों के साथ इश्यूज आता है वो आता है कि कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि इस सेमेस्टर वो पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि ये जो फी स्ट्रक्चर है
1: जी,
2: वो पूरे कोर्स का है
1: जी,
2: और वो एंड मोमेंट पे फोन करते हैं, एंड मोमेंट पे डिस्कशन करते हैं कि सर हमारी तो हमने तो ये सोचा था कि इतनी फीस है पूरी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर में डिवाइड कर लिया था। तो ऐसा नहीं है, वो सेमेस्टर वाइज फीस होती है, तो वो पूरी फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। थर्ड जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनके एडमिशन्स के लिए आ जाते हैं कॉलेजेस में और वो लास्ट मोमेंट में जा करके कोशिश करते हैं कि फीस सबमिशन के लिए, ठीक है, लास्ट आवर में कई बार फीस सबमिशन में उनके फीस सबमिशन नहीं हो पाता या उनका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, फिर वो लगातार कॉल करते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी और उनके एडमिशन्स नहीं हो पाए। तो ऐसा है कि वो लास्ट आवर को अवॉइड करें, वो पहले ही फी वगैरह सबमिट कर दें, ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज उनका एडमिशन कन्फर्म करना बहुत टफ होता है।
1: मान लीजिए एडमिशन फी जमा करते हुए पोर्टल में कुछ इशू आया, उनके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई कि सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ, और ऐसे में इस कंफ्यूजन के चलते बाय चांस उनका फीस रह गया, तो उस केस में क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा?
2: नहीं, उस केस में यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि टेक्निकल ग्लिच यदि यूनिवर्सिटी के पोर्टल में है तो आप उनके साथ स्क्रीनशॉट टाइमिंग के साथ आप भेजें और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद यदि हमें लगता है कि जस्टिफाइड केस है तो फिर हम उसको आगे कंसिडर भी करते हैं। एक कन्फ्यूजन्स ये होता है कि जैसे बच्चों को पसंद का कॉलेज चाहिए, एक मार्क्स आने के बाद उनको लगता है कि उनके पसंद के कॉलेज मिल जाए, लेकिन एडमिशन्स के टाइम पे जैसे फर्स्ट लिस्ट आना है, फर्स्ट लिस्ट में उससे मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता, तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता तो फिर बच्चे जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनका रोल मार्क्स आता है वहाँ पे कॉल करके ये पूछते हैं कि सर मुझे ये कन्फर्म करो कि नेक्स्ट टाइम क्या सेकेंड लिस्ट में हमारा वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा है कि वो कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं बता सकता कि उसका उस कॉलेज में हो जाएगा। बेटर ऑप्शन ये होता है कि यदि आपको लगता है कि उस कॉलेज में भी आ सकता है तो फर्स्ट आप अपनी एडमिशन लो। वहाँ अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, आप अपग्रेड मोड में जैसे ही आपने ऑप्शन ले लिया, जिस कॉलेज को आपने चूज किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको दिया है, यदि उस कॉलेज में नेक्स्ट कट ऑफ में आपका आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड होकर के उस कॉलेज को चला जाएगा। बस उस ड्यूरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको मैसेज आता है वैसे ही जो फी गैप है दोनों कॉलेज के बीच में जो फी गैप होगा वो भी आपको पेमेंट करना होगा, देन आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बच्चों के आते हैं। कोर्स वाइज कई सारे बच्चे ये कोर्स वाइज भी फ़ोन करते हैं क्या कि ये कोर्स कैसा है, इसमें हमारा मतलब प्लेसमेंट कैसे होगा, जॉब्स कैसे मिलेगा। ऐसा है क्या कि जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे अच्छे हैं, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आज के डेट में हर जगह डिमांड्स हैं। इस तरीके के कन्फ्यूजन में नहीं कि इस कोर्स को करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई ना कोई बेनिफिट है तभी बच्चे कर रहे हैं और तभी जो है सो उनको सक्सेस भी मिल रहा है। तो कोर्स जो आपने चूज किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पोर्टल पर जब एडमिशन के पोर्टल पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स यदि अप्रूव करते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हम डीजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या कि जो डीजी लॉकर यूज नहीं करते, तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट होता है क्या कि वो स्कैन जब करें तो क्लियरिटी के साथ स्कैन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट के सीरियल नंबर्स नहीं आते जिससे वेरिफिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो उन चीजों का वो जरूर ध्यान रखें।
1: लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने तो कर दिया अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल दिए, उन्हें नहीं पता कि आपको क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या फिर कहीं भूल चूक रह गई, अब ऐसे में कॉलेज को अगर कंफर्म करना है तो वो क्या करेंगे?
2: नहीं, उसके अंदर होता है बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें बच्चे अपने जो पेरेंट्स का अपना मोबाइल नंबर देते हैं, हम उन नंबर्स पे कॉल करते हैं, उनके दिए हुए ईमेल एड्रेस पे उनको ईमेल भी करते हैं कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिटी नहीं है, इनको दोबारा आप स्कैन करके विद इन टाइम लिमिट आप भेजो।
1: ओके,
2: तो ये ऑप्शन देते हैं। तो उससे ये भी है क्या कि वो बच्चे, जैसे पीछे कई ऐसे इंसिडेंट हुए कि बच्चे ने मेल ही नहीं चेक किया, फोन पिकअप नहीं किया,

0: और एडमिशन्स के क्लोज होने के बाद उनके फोन्स आए क्या कि हमने तो जो है सो हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो उस ड्यूरेशन में जब एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में जब आपके पास में कॉल जाता है तो आप प्लीज़ उसको अटेंड कीजिए। हो सकता है क्या कि उन कॉल्स में वो भी कॉल हों कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके मिस्ड हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो इसका मतलब ये है कि बी अटेंटिव, आपका कोई काम प्रोसेस में है और ऐसे में आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है जिस कॉल को आप समझ रहे हो मार्केटिंग कॉल है, हो सकता है वो आपके कॉलेज का, आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कॉल हो। सो बी अटेंटिव और कॉल्स को पिक करने या फिर उनको छोड़ते हुए ज़रूर देख लीजिए कि ये कॉल आपके मतलब का तो नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एडमिशन की जब बात आती है भाई, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, इसके साथ साथ अटेंटिव होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। बहुत ही ज़रूरी फैसला है जो आप कर रहे हैं। बहुत सी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बल्कि और भी अन्य हमारे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अगर इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो लगातार DU का जो एडमिशन पोर्टल है ना, उसको चेक करते रहना चाहिए ताकि आप तक सही अपडेटेड जानकारी पहुंचती रहे। फिलहाल आज का हमारा ये प्रोग्राम यानी कि अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन जो है, इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूं। समय हमारा था बस यहीं तक। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, नीचे पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी। ओडिशा और झारखंड में 2 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी। भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर का विस्तार होगा। 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वो जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में की थी इसकी शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अगले सप्ताह तक वार्ता शुरू करने की चेतावनी दी। कहा, ऐसा नहीं होने पर सैन्य हमले और तेज किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ सिटी लाइट्स, जहाँ पर होंगी दिल्ली एनसीआर की ढेर सारी बातें और कौन कौन सी बातें लेके आने वाली हूँ। अरे अरे, मेरी अभी पांव जो है ना वो जमीन पर तो है लेकिन हाथ आसमान को छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं ये आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी खबरें हैं और इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले भी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए एफएम रेनबो पर मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ।

भाई दिल्ली वालों, अपनी शॉपिंग लिस्ट बस अब जल्दी से बना लीजिए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शुभारंभ हो चुका है कुछ ऐसी चीजों का जहाँ पर आप जाकर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं।

अपनी शॉपिंग लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो बस उसमें ऐसी ऐसी चीजें भी आप लिख सकते हैं जो आपने कभी सोची भी ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। जरा ध्यान से सुनिए अब। कारीगरी बाजार दिल्ली 2026 15 जुलाई यानी आज से शुरू हो गया है और 25 जुलाई तक रहेगा। वन स्टॉप मेला है ये, बिल्कुल वन स्टॉप मेला। एक ही जगह पर मिलेंगे हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, हैंडलूम्स, टेक्सटाइल्स, रक्षाबंधन गिफ्ट्स, हरियाली तीज कलेक्शन, सावन स्पेशल शॉपिंग और बहुत सारी चीजें। अगर मैं एक एक चीज गिनवाने लगी ना पूरा एक घंटा इसी पर चला जाएगा। बता देती हूँ आपको ये लोकेशन कहाँ रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया और टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक। 15 जुलाई यानी आज से शुरू हो जाएगा और 25 जुलाई तक रहेगा। सपोर्ट योर लोकल आर्टिशन और घर ले जाए यूनिक हैंडमेड प्रोडक्शंस।

0: दिल्ली में सबसे बड़ी रथ यात्रा कहाँ होने वाली है, जानना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए मेरे यानी कि मस्त पलंग आरजे श्वेता के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार होंगी और ढेर सारी बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मन की बात है।

0: जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: बिल्कुल सुन सकते हैं गाने की तराने, और ये हर रोज सुबह आप सुन सकते हैं FM रेनबो पर। फिलहाल प्रोग्राम कौन सा सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट। सिटी लाइट्स में मैं हूं आपके साथ, आप ही की अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता, जहां पर बता रही हूं आपको दिल्ली NCR में कहां क्या क्या हैपनिंग हो रही है, कहां क्या चल रहा है, और कहां पर आप जाकर अपनी फैमिली के साथ और अपनों के साथ घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।
3: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

कहते हैं राधे राधे बोलो तो चले आएंगे बिहारी, और कान्हा जी आ रहे हैं हमारे दिल्ली में, और ये अपने एक नए रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में। हाँ जी, कल यानी कि 16 जुलाई को है जगन्नाथ रथ यात्रा, और दिल्ली की सबसे बड़ी रथ यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो होने वाली है कहाँ पर, त्यागराज नगर में। वहाँ आप जा सकते हैं और इतनी बड़ी, इतनी भव्य रथ यात्रा होने वाली है, और पहली बार तीन तीन रथ होने वाले हैं अलग अलग। बिल्कुल, तीनों अलग अलग रथ होने वाले हैं। बलभद्र जी के लिए एक सेपरेट रथ होगा, वहीं पर ही जगन्नाथ जी के लिए एक अलग से रथ होगा, और माँ सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी के लिए अलग से रथ बना है। और ये रथ छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े रथ बने हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी रथ यात्रा 16 जुलाई को 2 बजे से यहां पर शुरू होने वाली है। श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर, ये नई दिल्ली में है, सबसे पुराना मंदिर है। ये महोत्सव जो है ये 16 तारीख यानी कल से शुरू होगा, और 27 जुलाई तक यहां पर मेला और सब चीजें रहेंगी। फ्री एंट्री है, यहां पर आप जा सकते हैं बड़े आराम से। महाप्रसाद मिलेगा, यहां पर भजन होने वाले हैं, कीर्तन होने वाले हैं, उड़िया कल्चरल परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, बहुत सारी। जानते हैं अगर आप भी रथ यात्रा को खींचते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। आपके पुराने जितने कर्म हैं वो मिट जाते हैं, नई प्रॉस्पेरिटी और पीस यानी कि शांति और काफी सारी समृद्धि आपके जीवन में आती है, काफी सारी आपके पास ब्लेसिंग आ जाती है प्रभु जी की, और आपको स्ट्रेंथ मिलती है जिससे आप बहुत ही अच्छे से भावनात्मक रूप से भी आप भगवान से जुड़ पाते हैं। इसके अलावा और कहां कहां पर बड़ी बड़ी रथ यात्राएं होने वाली है। नोएडा के सेक्टर 34 में भी विशाल रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। और हौज खास दिल्ली में भी श्री नीलांचल सेवा संघ, यहां पर भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। और श्री जगन्नाथ मंदिर जो गुरुग्राम में है, सेक्टर 56 में, यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिरों में रथ यात्रा का उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। तो आप जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ रथ यात्रा के लिए जरूर जाएं और प्रभु जगन्नाथ जी की अपार आशीर्वाद अपने साथ लेकर आएं।

बिल्कुल हरी बोल और जगन्नाथ की रथ यात्रा में जरूर शामिल हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स मस मलंग आरजी श्वेता के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। ये ट्यून इन किया हुआ है आपने दिल्ली और एनसीआर की में अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं आप हमें हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी। भाई आप सबके लिए आज एक से बढ़कर एक न्यूज़ लेकर आई हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हों जहाँ पर आप ना सिर्फ अपने भारत की बल्कि विदेशी बाजार तक की भी जो पूरी यात्रा है एक ही छत के नीचे आपको सिमटी नजर आ जाए, एक ही छत में के नीचे आपको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी एक जगह है भारत टेक्स 2026। हाँ जी, दिल्ली में सज गया है वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक मंच और ये जो है भारत मंडपम में कल से शुरू हो चुका है। आज जो है 15 जुलाई से इसका सभी लोगों के लिए खुल गया है द्वार। 4 दिन तक चलने वाला है ये वैश्विक मंच। ये आयोजन देश के सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक मंच जो है वो बनके तैयार हो चुका है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको बता देती हूँ। 17 जुलाई तक ये चलेगा भारत मंडपम में और भारत टेक्स 2026 में दिखाई देंगी काफी सारी चीजें जहां पर आपको इतने अलग अलग तैयार परिधान मिलेंगे विदेशी बाजारों तक की पूरी यात्रा आप एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। करीब 16 लाख वर्ग फीट में फैले इस मेले में 1600 से लेकर 7000

हजार से ज्यादा आपके वैश्य भी खरीदार होंगे, 16,000 से ज्यादा प्रदर्शक हैं और 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारिक आगंतुक आने वाले हैं, 20,000 से ज्यादा बहुत सारे उत्पाद शामिल होने वाले हैं, यहाँ फाइबर, यान, फैब्रिक, परिधान, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जितनी भी आपकी आधुनिक मशीनरी है और सस्टेनेबल फैशनर है, वो सब पूरे टेक्सटाइल वेन्यू चेन आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। और आयोजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कारोबार को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में नई पहचान दिलाना भी है। और 20 से ज्यादा देशों के नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, कारोबारी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत उद्योग को नए बाजार और नए साझेदारियों के लिए भी एक अवसर मिल सकता है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, आप भी बहुत सारी खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ आपको, जैसे मैं आपको बता ही चुकी, काफी सारी चीजें होने वाली है, 39 पैनल चर्चा होने वाली है, इसके अलावा मास्टर क्लासेस होने वाली है, जो अलग अलग तरह की मास्टर क्लासेस होने वाली है, राउंड टेबल बैठकें होंगी, और इसके साथ ही आप B2B और 100 से ज्यादा B2G बैठकें होने वाली हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोकल व्यापारी हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और तकनीक पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। मोबाइल ऐप से भी होगी पूरी प्रदर्शनी जेब में। हाँ जी, आप अपने मोबाइल ऐप भी लॉन्च, इसमें विशेष जो है मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से स्टॉल आप आराम से खोज सकते हैं, B2B बैठक तय करने, डिजिटल बैच का उपयोग करने और रियल टाइम अपडेट पाने जैसी सारी सुविधाएं आपको मिल जाए। और इसके साथ आपको क्या चाहिए बताइए, इतने रंग बिरंगे कपड़े देखने के लिए मिलेंगे। ओहो, मेरा तो दिल अभी से कर रहा है कि बस शो करने के बाद तुरंत यहाँ पे पहुंच जाऊं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रामायण और बाल हनुमान जैसी शॉर्ट फिल्म्स भी दिखती हैं। और यही नहीं, इस पूरे पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन लाइट्स लगे हुए हैं, और जो यहाँ पर ये लाइट शो होता है ना, बहुत ही बेहतरीन शो होता है। अगर आपने अक्षरधाम पर जो लाइट शो देखे हैं, बस आप ये देख लीजिए कि उसी का मिनी वर्जन है, लेकिन बेहतरीन वर्जन है। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, जिसे आप गुरुग्राम कहते हैं, तो आप जरूर जाइए। और दिल्ली NCR के जितने भी लोग हैं या जो यहाँ पर अब आएंगे, भारत के कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आप दिल्ली NCR आ रहे हैं और अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो लीजिए अपनी लिस्ट में इस पार्क को भी ज़रूर ऐड कर लीजिए अब, क्योंकि यहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखिए किस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ खींचने वाले हैं और एकदम पिक्चरों जैसा माहौल दिखने वाला है। हर जगह फाउंटेन होंगे, आसपास फ़ोटो खिंचवाइए, रील्स बनाइए और बेहतरीन अपने आप को महसूस कीजिए।

परफेक्ट आउटिंग है इस वक्त अगर आप जाना चाहते हैं, और टाइमिंग भी क्या परफेक्ट है ना, शाम को 7 से 8 जब सूरज हल्का सा डूब रहा होता है और रात उससे मिल रही होती है, उस वक्त ये रंग बिरंगी सी लाइट्स और भी खूबसूरत लगती हैं। आप ऐसे डांस भी कर सकते हैं वैसे।

हाइट्स मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। और भाई बल्ले बल्ले होने वाली है, और क्यों होने वाली है बता दूं क्या आपको जल्दी से? ठीक है, बता देती हूँ। खासकर बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है जो है पौधे प्रेमी। हाँ हाँ हाँ, फ्री में मिल रहे हैं अब पौधे दिल्ली में। घर बैठे बैठे आपको फ्री में पौधे पहुंचा रही है सरकार। और सांस लेने के लिए जब दिल्ली वाले तरसते हैं और प्रदूषण के से फेफड़े काले हो जाते हैं, तब क्या ज़रूरत होती है? तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें एक प्यारी सी अच्छी सी स्वच्छ हवा की। और अगर आपके घर पर खुद जो पौधे हैं वो ऐसे लगे हुए हों जो आपके आसपास के माहौल को एकदम स्वच्छ कर दे, आपकी आबो हवा को एकदम शुद्ध कर दे, तो कहने ही क्या। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बस अब जो ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसी में आप अपने घर बैठे बैठे पौधे मंगवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, greendrive.delhivanmahotsav.in पर जाकर खुद को आपको अपना वहां पर एनवायरमेंटल सेवियर के रूप में रजिस्टर करना होगा। और इसके साथ ही नजदीकी जो भी आपकी गवर्नमेंट की नर्सरीज हैं उसमें मुफ्त में पौधे आप चुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चुन सकते हैं आप अपने पसंद के पौधे। और इस बार वृक्ष रथ योजना के तहत वन विभाग की टीम पौधे लेकर सीधे आपके घर या सोसाइटी आकर खुद पौधारोपण करेगी। और अब आप बताइए क्या मतलब 70 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य सच में क्या आप भी पूरा करवाना चाहते हैं या नहीं? अगर करवाना चाहते हैं तो आज ही जल्दी से जो पोर्टल लॉन्च हुआ है दिल्ली ड्राइव का, उसमें जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, greendrive.delhivanmahotsav.in पर जाकर अपने आप को एनवायरमेंटल सेवियर के रूप में जरूर रजिस्टर करवाएं। और फिर देखिए आपके घर खुद पौधे लेकर आ जाएंगे वन विभाग के लोग, और आप जो भी पौधा चुनेंगे वो पौधा आपके घर पर पहुंच जाएगा। ये ढोल बिल्कुल इन्हीं लोगों के नाम जो लगवा रहे हैं पौधे, अपनी दिल्ली को बना रहे हैं हरा भरा। आप भी जरूर दीजिए सहयोग।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और NCR में इस फ्रिक्वेंसी पर और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर अलग अलग शहरों में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार होंगी और ढेर सारी बातें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और अब आपको बता देती हूँ, एक बड़ी ही प्यारी सी प्रतियोगिता के लिए आवेदन मांगे गए हैं और वो प्रतियोगिता कौन सी होने वाली है जानना चाहते हैं आप क्या? संस्कृत प्रतिभा खोज 2026 प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 15 अगस्त जो है वो है। और इच्छुक विद्यार्थी संस्थान की वेबसाइट www.upsanskritpratibhakhoj.com पर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, www.upsanskritpratibhakhoj.com पर आप निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या फिर उसमें रुचि रखते हैं तो जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लें। और आपको अब चलते चलते बताती हूँ कि किस तरह से इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो एक जगह है वहां पर आप जा सकते हैं। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और नेशनल

गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में 18 मई को होने वाली है, सभी के लिए फ्री एंट्री। हाँ बिल्कुल सही सुना है, फ्री एंट्री। और यहाँ पर आपके लिए पेंटिंग वर्कशॉप्स होगी, आर्ट एग्जीबिशंस होने वाली है, प्रिंट जो मेकिंग सेशंस हैं वो होने वाले हैं, पैनल डिस्कशन होंगे, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो होने वाला है। तो बस आप यहाँ पे जाइए, रंग रंग बना दीजिए अपनी जिंदगी को। यहीं पर दीजिए मस्त पलंग आज श्वेता को इजाजत, फिर आपसे होगी दोबारा मुलाकात नई बातों के साथ और ढेर सारे गानों के साथ। अब तक अपने चेहरे पे रखिए मुस्कुराहट, ना जाने उसे देखकर कौन मुस्कुराना सीख जाए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और पेश अब तक के एफएम रेन में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी। ओडिशा और झारखंड में 2 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी। भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर का विस्तार होगा। 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन रेलवे योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जारिएवा से मुलाकात की। इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू की। अमरीका ने हवाई हमले तेज किए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों आज आपको हमें यह बताना है कि आपको वैसे तो उपहार कई मिले होंगे। जी हाँ, समय समय पर उपहार हमें मिलते ही रहते हैं, चाहे जन्मदिन का तोहफा हो या फिर कोई और अवसर हो। तो आपको आज हमें यह बताना है कि आपको कौन सा उपहार सबसे अच्छा लगा, जो आपने आज तक संभाल कर रखा हुआ है, और क्यों रखा है, ऐसी क्या खास बात है उस उपहार में। तो अपना जवाब हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है

8687070 या 9986810070 और सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। और आज मैसेज मसाला मिक्स के साथ आपके साथ है आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा।

उस ब्रेक के बाद एक ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप हैं इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमें हमारे 15वें जन्मदिन पर हमारे पिताजी ने एक रेडियो लेकर दिया था जो हमने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप ज़रूर उस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, यानी कि अक्सर जो है वो FM रेनबो सुनते होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बस जो तोहफा है ना, जो हमारे अपने किसी परिवार के सदस्य नहीं है, कोई भी दोस्त ने किसी ने भी हमें दिया होता है, वो हमेशा हमें दिल के करीब रखते हैं, हमेशा अपने दिल के पास संभाल कर रखते हैं। धन्यवाद आपका नरेंद्र जी संदेश भेजने के लिए। जसबीर सिंह चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। जसबीर जी कह रहे हैं कि मुझे सबसे पहला गिफ्ट मेरे जन्मदिन पर मिला था, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था और मैंने उसे हमेशा संभाल कर रखा हुआ है, हमेशा संभाल कर रखता हूं। धन्यवाद आपका जसबीर जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि गिफ्ट वो क्या था। बहरहाल जो भी गिफ्ट रहा हो वो आपके दिल के ज़रूर करीब होगा क्योंकि आपके मित्र ने वो दिया था। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कह रहे हैं, गुड इवनिंग प्रवीण जी, आपको भी शुभ संध्या। ये कह रहे हैं कि मुझे आकाशवाणी FM रेनबो की तरफ से एक नोटबुक, डायरी और एक टी शर्ट मिली थी जो मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है। क्या बात है भाई, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें किसी खास जगह से मिलती है, जिसे हम दिल से, हमारे दिल के करीब होता है, क्योंकि ये भी आपके अपना चैनल है। जी हाँ, ये आकाशवाणी FM रेनबो है, यानी दिल से दिल तक है और आपका अपना खास रेडियो स्टेशन है। बस आप यूं ही जूनियर जुड़े रहेगा। अगला संदेश किसका है देखते हैं। ये है जोया, ये जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई हैं। ये कह रही हैं कि मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला ये कह रही, मेरे सारे दोस्त कंजूस थे तो मैं अपने बर्थडे पर खुद ही गिफ्ट अपने आप को दे देती हूँ और किसी को कोई गिफ्ट नहीं देती। बिल्कुल देखो, होता ही ऐसा कभी कभी, जब कभी हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता ना तो जाहिर है इंसानी फितरत है, हमें भी गुस्सा आता है भाई, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हमारा कहते हैं ना, समय जो है वो हमेशा एक नहीं रहता, कभी ना कभी बदलता है। तो यकीन मानिए, कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको भी कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा हमारी उम्मीद है। तो आपके वो जो गिफ्ट है वो आपके दिल के ज़रूर करीब रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों कहीं मत जाइए, हम हाजिर होने इस प्यारे से गीत के बाद। सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। Say it, man,

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: हवा का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों वेलकम बैक। ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। चलिए देखते हैं अगला संदेश किसका है। दोस्तों ये हमें संदेश भेजा है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी ने, ये हैं हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं सरिता बिहार से, कह रहे हैं कि प्रवीण जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कह रहे हैं जिंदगी में सबसे अच्छा तोहफा हमें जो मिला वो है हिदायत। ये कह रहे हैं हमारे स्वर्गीय पिताजी से हमें जो हिदायत मिली थी कि कर्ज से दूर रहना और इसे याद रखना, आज भी मैं कर्ज से हमेशा दूर रहता हूँ। तोहफे वस्तु से ये कीमती चीज़, ये कीमती ज्ञान मेरे लिए प्रिय और संभाल कर मैं इसे रखा हुआ है और समय समय पर मैं दिमाग में रिमाइंड करता रहता हूँ। यानी उनकी जो याद है, उनका जो ये तोहफा है, जो हिदायत है हमें, मुझे मिली थी, इसे मैंने हमेशा अपने दिल के कोने में संभाल कर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है अनिल जी। ये कहते हैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसा कोई हिदायत होती है, किसी का संदेश होता है, कोई ऐसा ध्रुव वाक्य होता है, यानी कोई ऐसा कोई हमें कोई भी चाहे हमें एक संदेश दे दे या दिल की बात कह दे जिसमें ज्ञान छुपा हुआ है, संसार जीवन का जो सार है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी हिदायत होती है, बहुत बड़ा तोहफे से कम नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी, धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ये हमारे से जुड़ गए हैं मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि आठ दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। कह रहे हैं कि मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे प्यार और अपनेपन के साथ एक चाबी का छल्ला और चांदी की कलम तोहफे में दी थी। आज भी मैं उन दोनों निशानियों को बड़े जतन और सम्मान के साथ संभाल कर रखे हुए हूँ। जब भी उन्हें देखता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और दोस्ती की वो अनमोल खुशबू फिर से महसूस होने लगती है। इन्होंने कुछ पंक्तियाँ भी लिखकर भेजी हैं। ये कह रहे हैं, जो चले जाते हैं वो कहाँ लौट कर आते हैं, जाने वाले फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं, हम तो हर लम्हा उन्हें याद किया करते हैं, काश बिछड़े हुए लोग भी कभी लौट आते। वाह क्या बात है। अगला संदेश हमें मिला है रंजीत कुमार मंडल का, सिकटी अररिया बिहार से। कह रहे हैं, मुझे बेस्ट टीचर का पुरस्कार मिला था और मुझे जिले में सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है, इसमें मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खूबसूरत जो तोहफा है वो यकीनन मैं कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा रंजीत जी, मुझे भी याद है, मेरे भी टीचर ने मुझे जब मैंने पहली बार कविता सुनाई थी क्लास में, जब मैं छोटा था बहुत, तो मुझे एक 2 रुपये का नोट दिया था इनाम के तौर पर, उसे मैंने बहुत दिल से संभाल कर रखा हुआ था। तो यकीन मानिए कोई ऐसे तोहफे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो राशि हो, चाहे वो कलम हो या चाबी का छल्ला हो, कुछ भी हो, उससे हम अपने दिल के करीब रखते हैं। और यकीन मानिए जब कोई हमें अपना कोई ऐसा तोहफा देता है ना, जो हमारा खास होता है, हमारी जिंदगी में खास अहमियत रखता है, तो फिर तो बस उस तोहफे की बात ही अलग होती है या नहीं।

ये कह रहे हैं मैं आयांश हूँ, आयांश पाठक मेरठ से हूँ, और ये कह रहे हैं जब मैं 5 साल का था तो मेरे बाबूजी ने मोहल्ले के बच्चों को एक पार्टी दी थी। उस समय वो पार्टी में बहुत ही आनंद आया था और वो एक सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए जो आज भी मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल सही कहा आपने आयांश पाठक जी, धन्यवाद, आपका संदेश अच्छा लगा। यकीनन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी में हमारे साथ बीतती हैं तो हम उन्हें कभी नहीं भूल पाते, अगर उन्हें खुशी का जो पल होते हैं ना वो हम उन्हें फिर से जी लेते हैं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स, हाजिर होते हैं इस गीत के बाद।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों समय हो गया है 6:30:25। वेलकम बैक, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत और हसीन महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ, और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और आज हमने आपसे जो सवाल पूछा है बड़ा ही आसान है सवाल, ये है दोस्तों कि आपको ऐसा कौन सा उपहार है, कोई ऐसी उपहार कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी हिदायत हो सकती है, कोई भी तोहफा हो सकता है जो आपके दिल के बेहद करीब है, उसे आपने अब तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा तोहफा है दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070, 9868107070। यह अगला संदेश में मिला है, ये है देहरादून से आलोक पंवार और मिनी। तो आलोक और मिनी जी कह रहे हैं कि शुभ संध्या प्रवीण जी, आपको भी शुभ संध्या कह रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, उपहार मिला भी होगा तो संभाला नहीं, बहरहाल किसी रिश्तेदार या शुभचिंतक ने किसी खास मौके पर उपहार दिया होगा तो उसका दिल से आभार, क्या बात है। इसका मतलब आपके पास उपहार जो है वो बेशुमार होंगे, बहुत होंगे, शायद आपको गिनने का समय नहीं होगा। और यकीन मानिए उपहार जब मिलते हैं ना तो उसे हम संभाल के रखते चले जाते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ याद भी रह जाते हैं। बहरहाल सभी उपहार आपके दिल के करीब हैं, ये जानकर भी अच्छा लगा आलोक जी और मिनी जी, आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

अगला संदेश हमें भेजा है ललित राणा ने डेरा बस्सी पंजाब से। ललित जी कह रहे हैं, यूं तो बचपन से लेकर इस उम्र तक कई उपहार मिले हैं, पर दिल के जो करीब हैं वो है मेरी पसंदीदा बाइक जो मुझे मेरे पिताजी ने मुझे दिलवाई थी 12वीं पास होने के बाद। शायद मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। भाई वाह क्या बात है, ज़रूर आपने उस वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया होगा। बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए हमें, क्योंकि चालान कट सकता है। बहरहाल आपका ये बड़ी खुशी की बात है कि आपकी जो आपकी मनपसंद चीज़ थी आपके पिताजी ने आपको दिलवाई। और सेफ ड्राइविंग, आराम से ड्राइव करिएगा, हेलमेट ज़रूर लगाइएगा, और हम यही कहते हैं कि पिताजी का आभार हमेशा मानिएगा। विष्णु प्रसाद दांगी ग्राम खजूरिया से कह रहे हैं, मुझे मेरे मित्र ने रामचरित मानस पुरस्कार के रूप में दिया था, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। आपके द्वारा हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनका मतलब है कि प्रोग्राम के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे हर प्रोग्राम जो है कोशिश करते हैं एक से बढ़कर एक हों, और हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं। और ये आपने अच्छा कहा कि रामचरित मानस जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सही दिशा देता है, और यकीनन वो हमारी दिशा जो है बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और आप जब भी इसे पढ़ते होंगे आपको आपके दिल को शांति जरूर मिलती होगी। विष्णु प्रसाद जी धन्यवाद इतना खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। और ऐसा उपहार जो है ना जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते। धन्यवाद। अगला संदेश हम भेजा है रवि जोशी ने मेरठ से। रवि जोशी कह रहे हैं कि प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं भाई, आप कैसे हैं रवि जी? ये कह रहे हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे पिताजी ने एक कलाई की घड़ी मुझे गिफ्ट दी थी, उपहार में दी थी, और इसलिए दी थी क्योंकि मैं वक्त की कीमत को जान सकूं। ये घड़ी 25 साल से मेरे पास है, क्या बात है भाई। कहते हैं ना जो हमें उपहार मिलता है, हमारे जो माता पिता या कोई भी देता है, वो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, खासतौर पे वो जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं।

कहीं में जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से प्यारे से गीत के बाद। फिर करेंगे आपसे ढेरों बात है जो आपके संदेश में मिल रहे हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके संदेश हम सभी शामिल कर पाएं। धन्यवाद।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल,
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी दोस्तों, एक बार आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हैं इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में और हम ले रहे हैं आपके संदेश। ये हमें संदेश भेजा है भुवनेश ने, अशोक विहार दिल्ली से। भुवनेश कह रहे हैं कि आज के टॉपिक में कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बार मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था जो मेरे लिए ख़ास था, बहुत ही ख़ास तोहफा था, और 10 साल हो गए हैं मुझे और मैं आज भी इस पर FM रेनबो सुनता हूँ। क्या बात है भुवनेश जी, धन्यवाद। भुवनेश जी आपका आभार, इतना अच्छा गिफ्ट आपको मिला। आपके पिताजी को भी धन्यवाद। बस आप यूं ही सुनते रहिए, हमारा प्रोग्राम जरूर सुनते रहिएगा। और ये कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा जुड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात नहीं लिखकर भेजी। भाई आपको कौन सा तोहफा मिला था फारूक साहब, जो आपने आज तक संभाल कर रखा है, जरूर लिखकर भेजिएगा। महेश जानू मंडावा झुंझुनू राजस्थान से जुड़ गए हैं। महेश जानू जी कह रहे हैं कि मेरे लिए FM रेनबो सुनना ही मेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये मुझे किसी मेरे करीबी मेरे आरजे ने ही सजेस्ट किया था, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, और अब घूमते खेलते सफ़र करते इसी को ट्यून कर रखता हूँ। बिल्कुल सही कहा भाई, यकीन मानिए कभी कभी जो तोहफा होता है ना हमारे दिल के करीब होता रहा। FM रेनबो तो आपके साथ है दोस्तों, आपके हमेशा साथ रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आप ज़रूर सुनते रहिएगा, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। ये किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कह रहे हैं कि प्रवीण जी कैसे हैं आप, हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं। कह रहे हैं ज़िंदगी में जो हिदायत हमें मिली है वो ये मिली है कि उधार देना नहीं और नकद किसी से लेना नहीं। हम आज तक उसी पर कायम है। बिल्कुल भाई, क्या बात है, आपने बड़ा ज़िंदगी का बहुत ख़ास नियम बनाया हुआ है किशन जी। भाई वैसे तो बिल्कुल सही कहते हैं ना, आज नकद कल उधार वाली बात है। बस आप अपने जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह जीते रहिए, और हम चाहते हैं कि अपनी सफलता के जो है परचम लहराते रहिए और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते रहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज किशन जी, बस सुनते रहिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। देखते हैं अगला संदेश किसका है। यह गुलफाम खान दिल्ली से, दिल्ली शाहदरा से, ये कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद जी ने 2003 में मुझे सऊदी का एक रियाल दिया था जो मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। भाई क्या बात है, भाई कोई भी हमारा दोस्त कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता है, क्योंकि अगर हम उसके दिल के करीब होते हैं और वो हमें जब गिफ्ट देता है ना, कुछ भी हो चाहे गिफ्ट वो, तो हम उसे संभाल कर जरूर रखते हैं। और जब भी हम कभी वो गिफ्ट देखते हैं ना, कभी कभी सामान उलटते पलटते तो गिफ्ट सामने आ जाता है, तो यकीनन उस शख्स की याद हमें आ ही जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो मंजर जो है वो सामने आ गया हो। बहुत खूब गुलफाम जी, शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। रजनी शर्मा बागपत से कह रही है, मुझे भी मेरे फ्रेंड ने एक रेडियो सेट गिफ्ट किया था मुझे, क्योंकि मुझे रेडियो सुनने का बहुत ही शौक है। भाई क्या बात है, आप रेडियो पर हमारा प्रोग्राम भी सुन रही हैं, और यकीन मानिए हमें बड़ा अच्छा लगा आपको रेडियो गिफ्ट मिला। और जब कभी ऐसा कुछ आपको गिफ्ट मिलता है ना, तो आपको जरूर अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके दिल के करीब होता है ना, वो आपको मिल जाता है ना, बस उससे बड़ी बात ही नहीं होती। देखते हैं अगला संदेश देखते हैं किसका है दोस्तों।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों ब्रेक पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाले मिक्स आकाशवाणी एफएम रेडियो पर। दोस्तों लगभग 10 मिनट के आसपास हम आप रह गए हैं, बस हम कोशिश करते हैं कि आपके लगभग सारे संदेशों को

0: शामिल कर पाए। अगला संदेश में मिला है धर्म भाटिया का रोहतक से, साथ में अंजलि शर्मा भी हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट पार्टी पर मुझे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो वर्ड्स हमारे लिए कहे थे वो हमारे दिल को छू गए। इससे बड़ा अनमोल गिफ्ट तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि ऐसे टीचर आज तक नहीं आए और नहीं आएंगे। तोहफा तो हमें और भी बहुत मिले, लेकिन उनके वर्ड्स, जिनके वर्डिंग जो हैं, इतने अनमोल तोहफे के जैसे थे और हम उन्हें कभी नहीं भूल पाते। धर्म भाटिया जी, आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। यकीनन कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं, वो किसी तोहफे से कम नहीं होती हमारे लिए। इतना खूबसूरत संदेश आपने भेजा, धन्यवाद उसके लिए। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्तिनगर नई दिल्ली से कह रहे हैं कि मुझे गिफ्ट मिला था मेरे जन्मदिन पर, जो आज भी मेरा पहला गिफ्ट था जो आज भी मैंने संभाल कर रखा अपने पास। धन्यवाद इम्तियाज जी संदेश भेजने के लिए। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। कैलाश जी कह रहे हैं कि इनाम छोटा हो या बड़ा नहीं होता, उसका जो महत्व है, उसकी जो भावना है, वो बड़ी होती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आया था तो मुझे इंग्लिश डिक्शनरी गिफ्ट मिली थी। मैंने आज तक वो डिक्शनरी संभाल कर रखी हुई है और मेरे जीवन में एक विशेष महत्व रखती है वो डिक्शनरी। जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है। कैलाश जी धन्यवाद इतना अच्छा खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। एक और संदेश मिला है, हमें मिला है प्रिया का भी। प्रिया कह रही है कि नहीं, प्रिया इन्होंने ये शायद नाम ही लिखना भूल गई। कह रहे हैं मेरे को प्रिय तोहफा मेरे जन्मदिन पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था और वो था मेरा बर्थडे कार्ड। तो बर्थडे कार्ड इनको मिला तो ये कह रहे हैं कि ये तोहफा इन्होंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा, नाम लिखकर जरूर भेजिएगा अगली बार। अगला संदेश हमें मिला है गोवा से। गोवा से कौन है ये कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहा हूँ और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके गाने बहुत कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भाई आपने अपना भी नाम नहीं लिखा, नाम लिखकर जरूर भेजिएगा। अच्छा, इन्होंने पहले संदेश में नाम लिखा है, ये है नवलू वारक। तो नवलू जी धन्यवाद, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसके लिए शुक्रिया। बुरहानपुर मध्य प्रदेश से ये जुड़ गए हमारे साथ, बहुत सब काफ़ी श्रोता है। ये कह रहे हैं मकान का काम चालू है जिसमें काम करने वाले लोग जो हैं FM रेनबो सुन रहे हैं। ये है कालू पवार, दिनेश जाधव, पामा जाधव, गोलू पवार और युवराज चौहान। भैया आप सभी लोग प्रोग्राम सुनते रहिएगा, साथ में समोसे जलेबी भी जरूर खाते रहिएगा, साथ में चाय का भी लुत्फ उठाते रहिएगा और प्रोग्राम सुनते रहिएगा मैसेज मसाला मिक्स। और मकान का काम भी चालू रखिए क्योंकि काम भी साथ साथ चलना चाहिए और प्रोग्राम भी सुनते रहना चाहिए। ये हैं शमसुल कमर राही गंज डुपारा से। ये कह रहे हैं इन्होंने कुछ पंक्ति लिखकर भेजी है कि हकीकतों से बहुत दूर है मेरी आंखें, तुम्हारे वास्ते तोहफे में ख्वाब लाया हूँ, क्या बात है। ये कह रहे हैं पिछले साल मैं दिल्ली आया था, वहाँ हम एक हमारे दोस्त हैं हमारे RJ, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट पेन गिफ्ट किया था और वो जो था वो गिफ्ट मेरे लिए यादगार बन गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्या बात है। इससे पहले कि बातें और हो जाएं क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत। दोस्तों आपके संदेश तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन अगर गाने नहीं हो गए ना तो प्रोग्राम शायद बोर ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं एक प्यारा सा गीत आपको सुना दें।
1: प्राण प्रिय

दोस्तों समय बहुत कम रह गया, चलिए आपका संदेश कुछ शामिल कर लेते हैं। ये है श्रेयांश जुड़ गए मैसेज, कह रहे हैं कि मेरी नानी जो है हमेशा मुझे बहुत सारे गिफ्ट जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं और मैं चाहता हूँ, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। नानी आई लव यू, आपका न्यू और छोटा लिसनर फ्रॉम भटिंडा। भाई आपका धन्यवाद श्रेयांश जी, अगर नानी जी आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। अगले संदेश में ये है सोनू बिजनौर से, कह रहे हैं कि मैंने अभी रेडियो ट्यून किया, भाई सोनू जी आपने दे रहा है दुरुस्त है, बस आप सुनते रहिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, क्योंकि अब फिलहाल हमें लेनी है इजाज़त। लेकिन ये है अरुण कुमार फ्रॉम भटिंडा, ये कह रहे हैं जब मैं पांचवीं क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे घड़ी उपहार में दी थी जो मैं रोज स्कूल पहनकर जाया करता था। और धन्यवाद इतना खूबसूरत संदेश। ये कुमार गौरव हैं इंदुकर नेशनल पार्क तालुका चंदमोर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से, ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी तारीफ करें, धन्यवाद। और ये इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी दोस्त हैं, ये हैं फिलहाल जो है अब इससे पहले की और बातें हो जाए क्यों ना, इतने ही आपसे कहना चाहेंगे कि फिलहाल प्रवीण लेता है आपसे अनुमति क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, लेकिन अगले प्रोग्राम यानी 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, हम करेंगे मिलकर डांस, क्योंकि प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती। तब तक के लिए प्रवीण शर्मा से लेता है अनुमति इजाजत, सुनते रहिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी FM 10.4। नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं

प्रस्तुत अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी। ओडिशा और झारखंड में दो मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी। भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। भारत

मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जारियेवा से मुलाकात की। इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 के लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू की। अमरीका ने हवाई हमले तेज किए। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तो ये थे अब तक के FM 10 के समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक, और आप सभी हो गए आपके अपने मस्ती भरे प्रोग्राम के जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। आज आपके साथ स्टूडियो में उपस्थित आपको दोस्त रोज प्रवीण शर्मा, तो करते हैं मिलकर एक साथ डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ, तो दोस्तों कभी जाइए हम हाजिर हुए छोटे से अंतराल के बाद, सुनते रहिए म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: दोस्तों ब्रेक के बाद एक पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं बेहतरीन गीत। चलिए एक बार फिर करते हैं डांस इज डांसिंग फ्लोर पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सब

0: और बनाए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों का पुनः आपका हार्दिक नंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं म्यूजिक योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। दोस्तों आप इस वक्त जी हैं अपने मस्त मस्त प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और ले रहे हैं आनंद इन खूबसूरत से गीतों का। तो करते हैं एक बार फिर से डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

तो सौरभ फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए इजाजत। जी आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आपके में जाए क्योंकि विनीता बेदी जी आ गए स्टूडियो में लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही, तो आपकी जगह उनका स्वागत। तो फिलहाल प्रवीण लेता है आपसे अगली मुलाकात तक इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, शिवरात्रि, टेक केयर। जलवा, जलवा।

नमस्कार, एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण और मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बेहतर सड़क संपर्क के लिए 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी। ओडिशा और झारखंड में 2 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी। भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर का विस्तार होगा। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू। पहले ही दिन भारत से 14 करोड़ डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच गोबर का वैज्ञानिक तरीके से

इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 के लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर लागू की। दोनों देशों के बीच ताजा हमले जारी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। मौसम विभाग का ओडिशा में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 3 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण और 10 अन्य ने रजत पदक जीते। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम आपकी याद आती रही में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज फिर से आपकी दोस्त विनीता बेदी। याद तो है ना? दोस्तों, जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति शायद प्रेम है और उसकी सबसे गहरी अभिव्यक्ति है स्मृति। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए आते हैं, है ना, और अपने जाने के बाद भी सच में वो जाते नहीं हैं। वो हमारी धड़कनों में, हमारी आदतों में, हमारी खामोशियों में बस जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और आज की महफिल ऐसे ही एहसासों के नाम आप सभी के लिए। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो कहना है कि हम और आप एक साथ हमेशा हमेशा बने रहेंगे, ये सिर्फ कहना ही नहीं, क्योंकि आज जो भी है वो जीने की तमन्ना है, कल न जाने क्या हो।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि किसी के पास आने का कोई समय निश्चित नहीं होता और ना ही किसी के चले जाने का। इसलिए जो क्षण आज हमारे पास हैं, वही वाकई सबसे अनमोल हैं। दोस्तों, प्यार जो है ना, वो भविष्य के वादों में नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई में जीता है। शायद इसीलिए कुछ लोग हमें ये सिखा जाते हैं कि हर पल को आखिरी पल की तरह प्रेम से जी लेना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही, दिल को जाने क्यों भरमाती रही। और कभी ऐसा भी तो होता है ना कि किसी के जाने के बाद भी उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है। वो हमें टूटने ही नहीं देता, बल्कि हर कठिन मोड़ पर हमारा सहारा बन जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे कि कोई अदृश्य सी उंगली हमारा हाथ थामे हुए है और हम हर अंधेरे रास्ते पर उसी के भरोसे चलते चले जा रहे हैं। न जाने कब तक यह अंधेरा साथ रहेगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर मन में रहती है कि शायद कभी इस अंधेरी सुरंग के आगे कहीं रोशनी का दरिया दिखाई देगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और हम बात कर रहे हैं ना उन नामों की जो दिल को छू जाते हैं। दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम जुबान से कम और दिल से अधिक पुकारते हैं। उनका जिक्र किसी बातचीत का हिस्सा नहीं होता, वो तो सांसों की तरह हमारे भीतर चलता ही रहता है। कोई पूछे या ना पूछे, मन हर दिन उसी का नाम दोहराता रहता है। पता क्यों? सीधी सी बात है, कुछ रिश्ते सचमुच बड़े अजीब होते हैं। कुछ बिना नाम के भी उम्र भर साथ रहते हैं और कुछ नाम होने के बावजूद अजनबी बनकर रह जाते हैं। कभी कभी यही सबसे गहरा अपनापन उन्हीं लोगों से मिलता है दोस्तों, जिनसे हमारा कभी कोई रिश्ता ही नहीं होता। और सबसे बड़ी दूरियां वहां जन्म लेती हैं जहां सबसे अधिक नजदीकी होती है। ऐसे में दिल से यही पुकार आती है कि वो जो दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं, वो कहाँ है, कितनी दूर, क्या हमारे दिल की आवाज भी उन तक पहुंच रही है? और अगर हाँ, तो वो हम तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों ये दूरियां? कैसा है ये अजीब सा रिश्ता? नहीं, आपको भी लगता है ना? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और सच कहें तो प्रेम बहुत नाजुक होता है। ये शब्दों की ऊंची आवाजों से नहीं, बल्कि विश्वास की धीमी धड़कनों से जीवित रहता है। इसे शिकायतों से नहीं, संवेदनाओं से संभालना पड़ता है। एक छोटी सी, बहुत नन्ही सी उपेक्षा भी न जाने क्यों पर इसे घायल कर देती है। और दूसरी तरफ एक सच्चा स्पर्श इसे फिर से मुस्कुराना सिखा देता है। बड़ा नाजुक सा होता है ये रिश्ता, प्यार का, मोहब्बत का और इश्क का।

आपकी याद आती रहे रात भर। आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम आपकी याद आती रही एफएम रेनबो पर। दोस्तों, कभी कभी ना कोई हल्की सी हवा का झोंका यूं ही चेहरे को छूकर निकल जाता है और तब हमारा मन जैसे अचानक बरसों पीछे लौट जाता है। कई बार लगता है जैसे किसी ने बहुत धीरे से हमारा नाम पुकारा हो। ये जो यादें होती हैं ना, ये भी हवा की तरह होती हैं, ना तो दिखाई देती हैं ना रोकी जा सकती हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि उनका स्पर्श जिंदगी भर महसूस होता रहता है, चाहे हम कहीं भी हों, कैसे भी हों। अगर दिल में यादें बसी हैं ना, तो उनकी महक, उनका स्पर्श हमेशा अनुभव होता रहेगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना 4:00 से 5:00 तक।

विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ इश्क की, कुछ मोहब्बत की, और सबसे बढ़कर यादों की। आपको पता है, यादों में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है इंतजार। और किसी के इंतजार, किसी की प्रतीक्षा या किसी की राह देखने में भी एक अपना ही संगीत होता है। उसमें शिकायतें कम और समर्पण की भावना कहीं ज्यादा होती है। जो प्यार सच्चा होता है ना, वो कभी भी वक्त से नहीं हारता। वो हर दिन उसी विश्वास, उसी भरोसे के साथ अपने किसी की राह देखता है कि शायद अगली सुबह किसी का मिलन का संदेश आए, किसी की आहट सुनाई दे, या शायद किसी का स्पर्श फिर से याद दिला दे कि कुछ तो करार था हम में और तुम में।

आपकी याद आती रही, और याद आने में से सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे मुश्किल सवाल है, वो यही कि इस विरह के बाद, अब बिछड़ने के बाद जिए तो किसके लिए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमें धीरे धीरे ये भी सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम ही नहीं है, कभी कभी किसी की यादों को सम्मान पूर्वक अपने भीतर जीवित रखना भी सबसे बड़ी साधना होती है मोहब्बत की। आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।

की याद आती रही आकाशवाणी रेनबो पर। ये दिल भी बड़ा अजीब मुसाफिर है दोस्तों, ये लाख समझाने पर भी वहीं लौट जाता है जहां उसे कभी सच्चा अपनापन मिला था। पुराने रास्ते, पुरानी गलियां, पुराने गीत सब मिलकर उन अधूरी कहानियों को फिर से जीवित कर देते हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। देखा जाए तो प्रेम कभी समाप्त होता ही नहीं ना, वो तो केवल अपना रूप बदल लेता है। कभी वो साथ चलता है और कभी प्रार्थना बन जाता है, कभी किसी गीत की धुन में हमारे पास लौट आता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुछ लोग हमारे जीवन से विदा अवश्य हो जाते हैं लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाते। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की महफिल को यहीं विराम देते हैं। अपने रिश्ते सहेजिए दोस्तों, क्योंकि जो बातें आज कह दी जाती हैं ना, वो जीवन भर मुस्कान बनकर साथ रहती हैं। इसी के साथ अब मैं विनीता बेदी इजाजत चाहूंगी आपको ये कहते हुए कि फिर मिलते हैं आपकी याद आती रहे में, और एक घंटे बाद रंगे महफिल में फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। बाय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: Absolutely FM Rainbow, Akashwani's lovely channel on 102.6 megahertz. That's where you are tuned in. The name of the show is Rainbow Classics and I do hope that you are enjoying all these lovely curated playlists that we are absolutely pelting out for all our dear, dear listeners. Thank you so much for all those lovely messages that you've been, you know, sending out to us. And in case if you've missed out any of our listener and you want to share a message too, then this is the number where you can send it. This is 9868 or 107070. It's 9868107070. And what do I bring to you? Next, I have a lovely lady. In fact, most of the singers this evening have been, you know, some of the best crooners of the 1950s and the 60s. I bring to you this American country singer-songwriter who began her career in the 1950s. She's often known as the Queen of Rockabilly. I am talking to you about Wanda Jackson, one of the earliest female country singers. And the song that I bring to you is another beautiful, you know, rendition, Because It's You. So yes, this is Wanda Jackson, Just For You.

नमस्कार, लीजिए पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने देश में विनिर्माण परिस्थिति की मजबूत बनाए रखने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू होने के अवसर पर आज तेलंगाना से निर्यात खेप रवाना की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत की। प्रदेश में इस साल को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमेरिकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है।

एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो पर वक्त है प्रोग्राम रंगे महफिल का और बड़े अदब के साथ आप सभी का खैर कदम मैं करती हूँ विनीता बेदी। दोस्तों, इश्क की दुनिया में हर एहसास की अपनी जबां होती है, कहीं खामोशी बोलती है तो कहीं निगाहें गुफ्तगू करती हैं और कहीं कहीं तो एक अधूरी मुलाकात पूरी उम्र की दास्तान बन जाती है। गजलें इन्हीं अनकहे जज्बातों की सबसे नफीस तर्जुमन है। तो आइए आज की रंगे महफिल में उन्हीं एहसासों के कुछ रंग बिखराते हैं, कुछ आपकी कुछ हमारी, यूं ही सुनते और सुनाते हैं। कुछ जज्बात आपके तो कुछ हमारे, दिल से लेकर जबान तक लेकर आते हैं।

दोस्तों आप हैं रंग महफिल की महफिल में विनीता बेदी के साथ। और मोहब्बत जब कभी भी दिल में उतरती है तो इंसान वैसा नहीं रहता जैसा कि वो पहले था। उसके सोचने, समझने, जीने का अंदाज ही बदल जाता है। उसके लफ्जों में नरमी आ जाती है और सच कहें तो उसकी खामोशियों में भी किसी का नाम बस जाता है। क्योंकि इश्क जो है ना, वो कभी सिर्फ हासिल करने का नाम तो रहा ही नहीं, ये तो खुद को किसी और में तलाश लेने का सफर है। और जो कोई भी इस सफर को पा गया, शायद उसने मंजिल पाली, जिंदगी पाली, हकीकत पाली और इश्क की इबादत पाली।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंग महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, दिल जो होता है ना, वो तो आखिर दिल ही होता है ना, ये हिसाब जानता है ना कोई तर्क। जिसे एक बार अपना मान लेता है, उसके लिए हर तकलीफ उसे आसान लगने लगती है। और फिर जब यही दिल आहत होता है ना, तो दुनिया भर की सारी दलीलें भी उसको तसल्ली नहीं दे पाती। शायद इसीलिए कहा गया है कि दिल की अदालत में फैसले हमेशा एहसास सुनाते हैं। और जिंदगी में कुछ कमी तो ऐसी होती है जिसे कोई और भर ही नहीं सकता। महफिलें सजती रहती हैं, लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक कोई शख्स जरूर होता है जिसकी अनुपस्थिति या जिसका ना होना हर खुशी को अधूरा कर देती है। कभी कभी पूरा जहां साथ होता है, फिर भी दिल सिर्फ और सिर्फ एक आवाज की तलाश में न जाने कहां कहां भटकता रहता है।

0: जिस रिश्ते पर कभी नाज हुआ करता था, वक्त उसी रिश्ते को न जाने क्यों इम्तिहान में डाल देता है। मगर सच्चे जज्बात ना दोस्तों, शिकायतों से नहीं सब्र से पहचाने जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो है कि वो टूट कर भी कभी बददुआ नहीं देती, बस दुआ बनकर दिल में ठहर जाती है। और जिस मोहब्बत में अगर बददुआ निकले तो वो मोहब्बत होती ही नहीं, वो कुछ और ही होता है। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि इम्तिहान भी उसी रिश्ते का होता है जिस पर हमें दिल से नाज होता है।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है, कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गंगोली।

0: सुनारे या काजवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: तो पार्टी शुरू हुई है
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
3: म्यूजिक मस्ती
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती
7: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

कभी ढले ही नहीं, हमारी बातें कभी खत्म ना हों और बिछड़ने का लम्हा वो तो कभी जिंदगी भर ना आए। लेकिन जिंदगी का दस्तूर है कि हर मुलाकात में एक रुखसती भी लिखी होती है। शायद इसीलिए हर अभी ना जाओ के पीछे एक गहरा डर छिपा होता है कि कहीं ये मुलाकात हमारी आखिरी ना हो।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग महफिल अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, कुछ लम्हे इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल चाहता है वक्त यहीं ठहर जाए। शाम

दोस्तों, जिंदगी आसान कब रही है, लेकिन कुछ सफर इसलिए खूबसूरत हो जाते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बत साथ के साथ चलती है। और जब यही मोहब्बत याद बन जाती है, तब हर दिन एक नई आजमाइश बन जाता है ना? एक बात और है, यही दर्द इंसान को और गहरा और खूबसूरत भी बना देता है। गजल भी तो दोस्तों वहीं जन्म लेती है जहां दिल अपने आंसुओं को अल्फाज का जामा पहना देता है, क्योंकि कुछ लम्हे खूबसूरत होते हैं, कुछ लम्हे हमेशा दिल के करीब रहते हैं। उम्मीद है आज के रंग महफिल के ये एहसास आपकी रूह तक जरूर पहुंचे होंगे। मैं विनीता बेदी आपसे अब इजाजत चाहूंगी, फिर किसी शाम कुछ नए गजलों, कुछ नए अशार और कुछ अनकहे जज्बातों के साथ फिर से हाजिर होंगी आपसे मुलाकात के लिए। तब तक आप अपने दिल में मोहब्बत, उम्मीद और इंसानियत की शमा रोशन रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। सरकार ने देश में विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3रे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSP पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में अब से कुछ देर बाद अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 12:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी अभी आपने सुना सोनू निगम जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत। 12:15 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 12:26 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्जित के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: बारह बजकर 43 मिनट हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए जीरो आवर शो।
2: आज इस मुबारक मौके पर

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

12:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। रात के एक बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। सरकार ने देश में विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3rd भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSP पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जलंधर के छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशिया U19 और U23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 1:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

एक बार फिर से अलचेत। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम का पहला सॉन्ग, पहला गीत, कुमार सानू जी की आवाज में, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं।

0: 1:20 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी रात, मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: 1:36 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। रात के 2 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने देश में विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3rd भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSP पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनः निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए ना बने।

कार्यक्रम भुलाए न बने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम अलका याग्निक जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुम

0: मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: 2:23 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: 2:48 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए न बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 2:55 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए न बने। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने देश में विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति दी। भारतीय ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3rd भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSP पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज। इसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक और कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगा।

लीजिए श्रोताओं, अब पेश है अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के

दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के ईवीएसवी पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और साथियों अब समय है कार्यक्रम सारेगामा। तो लीजिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर।

मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोता आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सारे गामा। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित 3rd भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के चलते दिल्ली का लाल किला परिसर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में वार्ता की। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: सात बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की